परी ये सुबह मस्त भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

रह गए गंगाराम हम मेरा तुझे भी सलाम मेरा तुझे भी सलाम हम तेरे हैं गुलाम हम तेरे हैं गुलाम।

0: गए गंगाराम हम मेरा तुझे भी सलाम मेरा तुझे भी सलाम।
1: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

मंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार। कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिब तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

जोर ना जुगती छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान।

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर Travel Mantra.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Catch Raj Kapoor's evergreen classic Sangam, restored in 4K as part of the South Asian Film Festival this Sunday the 4th of October from 2 p.m. at your nearest Showcase Cinema. Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
8: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
9: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
8: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
9: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
8: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
9: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
8: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
9: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02842606
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे
11: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
10: ये तो बताओ कोई पता चला
11: गुरु गुरु
12: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
11: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है
12: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
10: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर
13: टू बुक कॉल 0208-514-5400 online at Eventbrite.
14: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner Ragasan.
16: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

के हाँ हाँ हाँ और सुनो और सुनो हाँ एक एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हाँ हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

ये तो अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है? कोई है? कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: What food make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
2: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
1: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
2: Friends, family ya special night out. इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
3: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट. ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
5: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: दिवाली सितारों से मुलाकात भी।
1: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
0: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
1: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
0: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947।
1: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016।
0: दिवाली का जश्न अपनों के संग।

0: Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 Our line.
3: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0208426-0678।
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
5: तेरा क्या होगा रे कालिया?
6: सरदार मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
5: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
7: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
8: पूनम स्वीट सेंटर 86 वेस्टर्न रोड साउथ हॉल। कॉल 0208574-4934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
9: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: That's my orchestra of rubber ducks playing for me whilst I soak in a bubble bath. Yes, I have rubber ducks playing for me. I wish I could tell you that checking your tax and making any claims on the HMRC app felt like this. But I wouldn't go that far. Although, it is easier, and it will make you feel that little bit more on it.
4: For your money and tax, download the HMRC app and be on it today. You're on it.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
3: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
2: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
3: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
2: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
3: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
2: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
3: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02284260678
4: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler. Get ready for winter.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
2: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
1: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
2: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
1: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
2: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
1: टिकट बुक करो segalondon.co.uk।
2: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
3: Sunshine, skyscrapers and souks.
4: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all prices.
5: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
6: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग बैक? व्हाट इफ योर रीमॉर्गेज पेड यू?
7: एट कैशबैक रीमॉर्गेजेस वी फाइंड यू डील्स दैट पुट रियल मनी बैक इन योर पॉकेट, नॉट जस्ट अ लोअर रेट बट एक्चुअल कैश, हंड्रेड्स समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स जस्ट फॉर स्विचिंग।
6: आवर एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैव हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ होम ओनर्स across the UK remortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915, that's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
6: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
11: Danu 11, 11. Danu Properties.
12: लंडन हलो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10 थी 20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली। एडल्ट टिकट्स 10 pounds, 16-17 अने 18 अक्टूबर 15 pounds, 5 थी 10 वर्ष ना बाड़को ने 5 pounds, अंडर 5 फ्री, 11 रात नो सीजन पास 100 pounds। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा इटले Best and best.
13: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
14: Celebrate every get-together with Haldiram's.
15: Punjabi samosas, aloo tikki, momos, spring rolls, beetroot kebab and more.
14: Bring everyone together over your favorite snacks. Find it at your nearest grocery store.
15: Haldiram's.
13: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast. WhatsApp message Leica Gold now on 07444-232323. Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.
16: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold. Feel good classics all day. This is Leica Gold.

गुड मॉर्निंग। स्वागतम, आइए पधारिए और शामिल हो जाइए मनोरंजन की महफिल में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड, लाइका रेडियो मिडलैंड्स और वह विभिन्न माध्यमों से दुनिया भर में पहुंचने वाला आपका अपना ये रेडियो और रेडियो पर मनोरंजन कार्यक्रम लेकर मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज शुक्रवार वर्ष 2026 के अक्टूबर महीने की 2 तारीख विश्व नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती है आज 2 अक्टूबर। और एक ऐसा सिद्धांत, एक भाई ऐसा विचार जो पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है, उसे याद करते हैं। हालांकि शांति की बजाय भाई हमारे आसपास अशांति ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। संगीत से और भाई हंसी के ठहाकों से, शायरी से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, दिल बहलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है स्वर ईश्वर है, संगीत जीवन है। डमरू, वीणा, झांझर, घुंघरू,

0: मकसद तो संवाद से है, संवाद यानी डायलॉग। पाया किसी ने नाच के पायो शाम, ये सारी जीवन की लीला ब्रह्म रूप सुरनाद से है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Leica Radio 90s. Leica Radio Punjabi. Leica Gold 2. Now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: वेरी गुड मॉर्निंग भाई. आज शुक्रवार 2 अक्टूबर के दिन जो रेट चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके का, हम आपको बता रहे हैं. आप अगर पहुंचाना चाह रहे हैं पैसे अपनों को भारत में तो नोट कीजिए. टुडे द रेट इज 126.5 रुपीज फॉर 1 पाउंड. भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में 126.50 रुपये दिए जा रहे हैं 1 पाउंड के बदले. यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय-टू-लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
2: टेक द फस आउट ऑफ बिजी मॉर्निंग्स एंड स्टार्ट विद हार्ट. With a thick, creamy bowl of Yo Valley Organic Greek-style natural yogurt. Simple, honest ingredients to set you upright. Or try our velvety Yo Valley Organic Strawberry Yogurt. Deliciously wholesome for big hearts and little ones. Real fruit, nothing artificial. Whatever your breakfast looks like, find your family's favorite in store today. Yo Valley Organic. Breakfast made with real heart.
3: Like our gold.
4: No, sorry, mate.
5: No, we don't have that part.
6: Have you tried down the road?
7: We can get it in, but it won't be for a few days.
8: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: Rafta rafta ho mere haste ka sama ho gaye.
4: Aapka naya station Laika Radio Ghazals bahut jald आ रहा है.
5: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
7: Welcome back to the world of music. संगीत की ओर लौट आइए. अब भाई कुछ लोग इनवाइट करते हैं लेकिन न ठिकाना बताते हैं न समय जताते हैं भाई कितने बजे कहाँ पहुँचना है. हम पूरा विवरण दे रहे हैं, नोट कर लीजिए. मिलते हैं

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: क्या बात है साहब, एक के बाद एक गीत हैं अनेक, सुनते रहिए.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: दिला दूं आपको भाई, इस गीत के बाद हम आप आज के प्रमुख समाचार सुनाएंगे आपको. लाइका रेडियो नेटवर्क पर सुनिए सुरीली आवाज, सुरीले साज़.

रवि साहब की बनाई धुन पर लता जी की आवाज और इस गीत को भैरव भाइयों कितनी भी बार सुने आपको ये गीत हमेशा नया लगेगा।

जरूरत है इंसानियत की, मोहब्बत की, जरूरत है अमन चैन की, शांति की। भाई खबरों का समय हो गया है और खबरों की ओर मुड़ते हुए बता दें आपको कि आरएफ बेस की छानबीन के आसपास जो घटना घटी थी उसकी भी छानबीन करते हुए एंटी टेरर पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। एक यूके ईरानियन नेशनल हैज बीन अरेस्टेड ऑन द सस्पिशन ऑफ प्लॉटिंग A terror attack following the incident at RAF Fairford. इसके अलावा भाई जो लोग जो है जेलों में स्थान की जगह की कमी के कारण जल्दी रिहा किए जा रहे हैं, अपराधी रिहा किए जा रहे हैं, अब वो अपना ठिकाना ढूंढ रहे। कई तो मुंह छुपा करके बाहर निकल रहे थे कि वो उनकी पहचान जाहिर ना हो, लेकिन कई लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर आके और प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स बोल रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा चर्चित जो घटना

0: है वो तो वो प्लेन वाली है। और चर्चा हो रही उस भारतीय पायलट की भाई, जिसे हीरो जो है मान रहा है विश्व, कभी कभी अमेरिका से लेकर इसराइल तक और भारत। कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसे दो पायलट्स के बीच की लड़ाई मान करके टालने की कोशिश कर रहे हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स, मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइक आर रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। नेतन्याहू का दावा है कि फ्लाइट हमलावर जो है वो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारों के लिए ब्रेन वॉश किए जाने के संकेत है उसके, वो उस तरह का आदमी था। भारत से आने वाली खबरों में नई दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी। एशियन गेम्स में लवलीना बरगोहाई ने चीन के बॉक्सर को हराकर जीता गोल्ड मेडल, और एशियन गेम्स में ही महिला रिकॉर्ड में भारत का गोल्ड, दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। लेकिन साहब खेलों की बात करें तो क्रिकेट के बिना तो फिर खेल जो है वो पूर्ण नहीं लगते हैं, और क्रिकेट आज का जो मुकाबला है वो आज है कि कल खेला जाएगा, लेट मी सी। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट का मुकाबला, एक तो एशियन गेम्स में जो है वो मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान का, बट दैट विल बी टुमारो, सुबह 6 बजे से मैच है। इसके लिए भाई लोग इंतज़ार करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला। और इसके अलावा भाई एक और मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच, ये दूसरी टीम जो भारत की खेलेगी, ये मैच भी कल होगा सुबह 9:30 बजे। क्रिकेट से भी हम आपको जोड़े रखेंगे। लौटाइए अब समाचारों में जो खेल आ रहे हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद लवलीना ने बताया कि मैंने तो संन्यास ले लेने का फैसला कर लिया था, 2024 ओलंपिक के बाद मुक्केबाजी से वो रिटायर्ड होना चाहती थी, लेकिन पेरिस खेलों में मेडल नहीं जीत पाने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, जो सही साबित हुआ। अब उन्होंने, भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने अपना पहला एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीत लिया है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाने की खबरों का खंडन किया है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर मायावती को एड्रेस करते हुए लिखा है कि आप मेरी पॉलिटिकल गुरु हैं, मेरी इंस्पायरेशन हैं, आप मेरी बुआ भी हैं और माँ भी हैं। राजनीति में मैंने जो कुछ सीखा आपसे सीखा है, मैं आपके मार्गदर्शन में हमेशा रहूँगा और कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँगा। भारत से आने वाली खबरों में जंतर मंतर पहुंचने से पहले सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली में काफ़ी जो है पुलिस व्यवस्था की गई। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को अरेस्ट किया है उनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विपक्ष की नेता आतिशी भी शामिल हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोदी जी सवालों से मत डरिए, बाहर आइए और देश को जवाब दीजिए। इंटरनेशनल खबरों में मदीना पर हमले के दावे के बाद पाकिस्तान और कतर के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। यमन की इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार की हिमायत करने वाले फौजी गठबंधन ने हूती विद्रोहियों पर मदीना में एक बिजली सप्लाई स्टेशन पर ड्रोन हमला करने का इल्जाम लगाया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की लीडरशिप वाले गठबंधन के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 29 सितंबर 2026 को सुबह 5:11 पर मदीना में एक बिजली सप्लाई स्टेशन पर अटैक किया गया। गठबंधन का कहना कि घटना की जांच और इस्तेमाल किए गए ड्रोन के मलबे के आकलन के बाद ये नतीजा वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। डीजल की कमी के बीच ट्रंप ने सप्लाई रोकने के संकेत दिए, एक्सपोर्ट बंद करने के तरफ उन्होंने इशारा किया है। ओलिवर स्मिथ, सीनियर बिजनेस प्रोड्यूसर सिमोन जैक, बिजनेस एडिटर आर्ची मिशेल और कई लोगों की रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूरोपियन कंट्रीज से उनके डीजल भंडार का कुछ हिस्सा जारी करने के लिए कहेंगे। ट्रंप डीजल की कमी के बीच अमेरिका से इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का विचार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर के कुछ और खबरें आ रही हैं। दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर मुजाहिरे के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो के कई स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि कई स्टेशन जो आज बंद रहेंगे। ज्ञानेश कुमार, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जो है जोरदार तैयारी चल रही है। उसी इलाके में धारा 163 लगाई गई है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस को लगता है कि उसके बाल्टिक क्षेत्र में स्थित कैलिनिनग्राद पर सीधे अटैक हुआ है तो वो अपने पास मौजूद सभी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। उनका इशारा शायद न्यूक्लियर हथियारों की ओर भी था। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस किसी को धमकी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के नेताओं के उन बयानों का जवाब दे रहा है जिनमें कहा गया है कि रूस 2029 या 2030 तक युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस पूरे सप्ताह रूस ने नेटो पर अपने इलाके की नाकाबंदी की तैयारी करने का आरोप लगाया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथ ऑल ट्रेवल याद दिला रहे हैं ट्रेवल टू दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग. साउथ ऑल ट्रेवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स. ट्रेवल बाई 10th December. कॉल साउथ ऑल ट्रेवल ऑन 02088434444 और विजिट southalltravel.co.uk.
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: For breakfast worth taking time over, start with heart. Try our thick, creamy Yo Valley Organic Greek-style natural yogurt. Perfect for dolloping over warm pancakes or swirling into fresh berries. Proper breakfast, naturally delicious, whatever your breakfast looks like. Find your favorite in store today. Yo Valley Organic. Breakfast made with real heart.
4: Leica Gold.
2: TravelHubWorld.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
10: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे. We'll be right back.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: Celebrate with Haldiram's.
2: Punjabi chole, rajma rasila, yummy dal makhni, aloo matar, sarson da saag and more.
1: Festive favorites ready to eat. Shop at haldiramuk.com or at your nearest grocery store.
3: Haldiram's.
4: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
5: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
6: आज बहुत लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं भाई. हम चिंतन में जिक्र करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के से कोई प्रसंग, क्योंकि आज उनकी जयंती है. पर आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है. पर भाई हमारे फिल्मी प्रेमी और संगीत प्रेमी श्रोता याद दिला रहे हैं कि देखिए साहब भूलिएगा नहीं, आज आशा पारेख का भी जन्मदिन है. आज ही के दिन जन्मी थी आशा पारेख. बंगलोर में जन्मी थी 1942 में. और आशा जी भाई हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं. बड़ी प्रतिष्ठित अभिनेत्री. और अरे मैंने बता दी उनकी उम्र, ये तो गलत किया. सॉरी आशा जी, मैंने सिर्फ ये बताया कि आप कौन से साल में जन्मी थी, मैंने आपकी उम्र नहीं बताई है. जब कभी आप छोटे पर्दे पर या किसी कार्यक्रम में नज़र आती हैं, बड़ी ग्रेसफुली होती हैं. और उम्र का क्या है, वो तो एक संख्या है, छुपा लेते हैं.

0: जिंदगी वहां सैटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
2: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
1: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
2: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
5: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड. एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocentre.org assuming you want to get noticed.
6: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.

वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, ये प्रोग्राम लेकर दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। ये समय चिंतन का है, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और भाई ये चिंतन जो है ये ब्रिटेन की सीमाओं को लांघकर ईस्ट में वेस्ट में दूर दूर तक देशों में सुना जाता है, और जब हमें रिस्पॉन्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें एक बार फिर से भारत में प्रयागराज तीर्थ से प्राप्त हुआ है, भेजा है पंडित प्रहलाद नारायण व्यास जी ने, प्रहलाद नारायण व्यास शुक्ला जी। भाई आप चिंतन के प्रेमी हैं और याद दिला रहे हैं कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। भारत में तो लोग मना ही रहे हैं, लेकिन भारतवंशी जहां जहां हैं और अहिंसा प्रेमी जहां हैं, दीन दुखियों से प्रेम करने वाले, जरूरतमंदों की मदद करने वाले, निस्वार्थ भाव से अहिंसा पूर्वक, हिंसा भाई चाहे वो शरीर की ही नहीं होती है, मारपीट खून खराबा वो तो हिंसा है ही, लेकिन आप वाणी से भी अगर किसी को दुख पहुंचाते हैं कड़वा बोलकर, वो भी हिंसा है। न मन से, न वचन से, न तन से किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करने वाला व्यक्ति गांधीवादी हो सकता है। गांधी जी की जयंती के साथ साथ आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। वो छोटे कद के धोती वाले लाल, क्योंकि धोती पहनते थे। भाई शास्त्री जी के बारे में अनेक बातें हैं, हम फिर भी कभी प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। गांधी जी का तो जीवन चरित्र पूरा जो है चिंतन प्रदान करता है। लेकिन आज व्यास जी ने घटना लिख के भेजी, ये गांधी जी के भीतर एक गुण ऐसा था जो अहिंसा को, सद्भावना को, प्यार को वो प्रचारित करता है, और आज उसी की जरूरत है। कहते हैं मैं तो मानस पाठ करता हूं, यानी यहां प्रयागराज में, प्रयागराज बता दें आपको भाई, जो इलाहाबाद नाम था जिस शहर का, उसका असली नाम, शास्त्रीय नाम प्रयागराज था। वहां से ये भिजवाते हैं चिंतन, और व्यास जी प्रहलाद नारायण शुक्ला जी लिखते हैं कि गांधी जी दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते थे, और संत का यही स्वभाव है। संत सहै दुख पर हित लागी, जो दूसरे के दुख के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, उसे सहन करे, वो संत है। पर दुख हित असंत अभागी। आज खबरों में सुनकर के गर्व होता है कि एक भारतीय पायलट ने दूसरों को बचाने के लिए उस खून खराबे के बीच जख्मी होकर के, बेहोश होकर के, वो भाई उन्होंने दरवाजा खोला, मदद को अंदर आने दिया, और आतंकवादी को पायलट को लोगों ने दबोच लिया, वरना एक और 9/11 जैसा हादसा होने जा रहा था, ऐसा मानते हैं सब। दूसरों का दुख जो महसूस करे वो संत है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी प्रोफेशन में कोई भी काम करता हो, वो गांधीवादी है, वो अहिंसक है, वो लाल बहादुर शास्त्री का फॉलोवर है। एक बालक को किसी अपराध में थोड़ी सी सजा हुई थी, जेल की सजा हुई थी, पर बच्चा चिंतन किसी तरह से भी जेल से भाग निकला। अब भाग तो निकला, लेकिन जाए कहां, पुलिस उसके पीछे थी। बहुत बड़ा गंभीर अपराध नहीं किया था उसने, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं था, उम्र छोटी थी, इधर उधर भटक रहा था। अब उस जमाने में पुलिस ने उसके ऊपर 50 रुपए का इनाम भी रखा, तो बहुत छुपा छुपा रहता था, भूख से बुरा हाल था। एक दिन उसका खाना नहीं मिला था 2 दिन से। उसने समीप के गांव में जाकर के एक झोपड़ी पर दस्तक दी, और झोपड़ी में
एक गरीब किसान परिवार रहता था, उससे खाना मांगा। किसान ने कहा, भैया काश हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ होता, खाना नहीं है। खाना क्या, अनाज भी नहीं है, इस साल तो हम लगान भी नहीं चुका सके हैं। मालूम होता है दो चार दिनों में ये जरा सी जमीन और झोंपड़ी भी कुर्क हो जाएगी, फिर क्या होगा ईश्वर जाने। किसान की हालत देखकर बालक अपनी भूख तो भूल गया और उसे इतनी दया आई, उसकी आंखें सजल हो गई और कहने लगा, देखो मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूं और मुझ पर 50 रुपए का इनाम है, तुम ऐसा करो मुझे पकड़कर पुलिस को सौंप दो, तुम्हें 50 रुपए इनाम में मिल जाएंगे, बताओ तो तुम्हें लगान के लिए कितने रुपए चाहिए। किसान ने कहा, वो तो सिर्फ 40 रुपए चाहिए। अरे तो तुम 40 रुपए से लगान भी चुका देना, 10 रुपए में कुछ और भोजन का इंतजाम कर लेना, पर प्लीज मुझे गिरफ्तार करवा के तुम ये इनाम ले लो, जल्दी करो। किसान ने कहा, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। परंतु लड़के ने बार बार मिन्नत की, प्लीज मैं बहुत दुखी हो गया हूं आपकी बात सुनकर, आपकी हालत देखकर, मुझे मेरे हाथों को रस्सी बांध दो और मुझे बांध के लेकर चलो थाने में। किसान ने बड़े दुखी मन से उस बालक का कहना माना, थाने में ले गया और वहां 50 रुपए का इनाम उसे मिल गया। अभियोग में मुकदमा चला, गवाह के लिए किसान को बुलाया गया। इस कैदी को तुमने कैसे पकड़ा, यह सवाल पूछा गया कोर्ट में। तो किसान ने कहा, मालिक आपको हैरानी होगी, मैंने इसे नहीं पकड़ा, इसने अपने आप को खुद पकड़वाया है। हमारी हालत देखकर इसका दिल भर आया, यह खुद भूखा था लेकिन इसने अपने आप को गिरफ्तार करवा के हमारे हाथों हमें इनाम दिलवाया। हाकिम को बालक की दया के बारे में सुनकर के बड़ी खुशी हुई, ये तो अपराधी लगता ही नहीं, छुटपुट अपराध के लिए, छोटे कसूर के लिए, वो भी स्कूल में उससे हुआ था, उस बालक को जेल में लाया गया था। पर जेल तोड़कर भागना अपराध था, पर बच्चे ने सोचा था आजादी मिल जाएगी, पर उसे मिली भूख, उसे मिला पुलिस का भाई डर खौफ। और बच्चे का जब इतिहास जाना गया, उसकी बैकग्राउंड, तो भाई वो अपराध प्रवृत्ति का था ही नहीं। अब हाकिम ने खुद सरकार से ये गुजारिश की, प्रार्थना की कि इस बच्चे को क्षमा कर दिया जाए। किसान को इनाम भी मिल गया और बच्चे को रिहाई भी। पर अब बाकी सबको यह संदेश मिला, जो व्यक्ति दूसरे का दर्द महसूस करता है, अपनी भूख को भूरा कर किसी और का पेट भरता है, जो अपनी चोट को, अपने दर्द को इग्नोर करके दूसरों का दर्द बांटता है, वही सच्चा संत है।

पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान ना आने रे। मन में इस बात का अभिमान भी ना आने दे कि मैंने कुछ किया है। अपने आप को गिरफ्तार करवा के बच्चा कोई क्रेडिट नहीं चाहता, वो तो अब ब्लेम सर पे ले रहा है। जेल से भागने का वो अपराध स्वीकार करता है। ऐसे बहुत सारे किस्से भाई हमारे आसपास घटते हैं, घटनाएं घटती हैं जो बताते हैं कि किसी दूसरे का दर्द महसूस करना ही सच्चा धर्म है। हमारे बैसन साहब कह रहे हैं करुणा सच्चा धर्म है, जो हमारे मन को शांति और दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। दया धर्म का मूल है। अगर आपके हृदय में दया है, अगर आप किसी दूसरे का दुख अनुभव कर सकते हैं। हमारे प्रहलाद नारायण शुक्ला व्यास जी आज का चिंतन भिजवा रहे हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। कहते हैं मानस से प्रेरणा मिली है, संत सहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। जो दूसरे को दुख पहुंचाए वो असंत है, जो दूसरे का दुख बांट ले, दर्द को बांटने की कोशिश करे वो संत है। आज के चिंतन के साथ जो आपने भजन सुना, गांधी जी का प्रिय भजन माना जाता है, संभवतः नरसिंह मेहता जी की रचना है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीढ़ पराई जाने रे। दुनिया में बहुत सारे धर्म संप्रदाय हैं, मजहब हैं, पर कहते हैं भाई धार्मिक व्यक्ति तो वही है जो दूसरे के दर्द को महसूस करता है। बहुत सारे लोगों ने भाई भारत से भी हमें संदेश मिल रहे हैं, क्योंकि आज का तो चिंतन भी भारत से आया है। परिमल मेहता, संभवतः कहां से आपने लिखा है, लेकिन भारत का नंबर है आपका, भारत से आपका संदेश आया है। थैंक यू वेरी मच, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप ऑन इंडियन फोन बट लिविंग इन यूएस, ऐसे अमेरिका में रहते हैं, मैं भारत का नंबर जरूर इस्तेमाल कर रहा हूँ फोन। भाई परिमल मेहता जी थैंक यू वेरी मच, औरों को भी जोड़िए हमारे साथ। राजेंद्र राज, स्वीटी कालड़ा, हमारी वत्सला जी कहती वैष्णव जन तो तेने कहिए, ब्यूटीफुल भजन, पर डोंट फॉरगेट जय किसान, जय जवान जय किसान नहीं भूलेंगे, सुनवाएंगे आपको भाई। जय जवान जय किसान क्या है, एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसा नारा जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। समय की नब्ज को पहचान कर नेताओं ने जो बिहेव किया, जो बर्ताव किया, पूरी भाई कौम के लिए एक वो एग्जाम्पल बन गया, प्रेरणा बन गया। रानी ऑफ स्लोर थैंक यू, जगदीश जी बुशी में, निर्मला जी, नीला चौधरी जी, अरुणा और भूपेंद्र पटेल, बीना पारेख जी, जैस्मीन जी, सहर अरुणा और नैना शाह, भरत गंगाराम, हितेश पटेल गुजरात वडोदरा थी, केम छो तमे भाई सारू, अर्जुन जी, हिमांशु पटेल, मानसी, इमरान, इमरान भाई आप कहाँ से, फूलों का गुलदस्ता भेजा आपने, चित्र भेजा, ठीक अच्छा लग रहा है, थैंक यू। राजकुमार जी आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, हेतल सोलंकी और चियांग जी। लीजिए बहनों भाइयों, याद दिलाते हुए कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती और साथ में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती, तो आज का चिंतन समेटते हैं। शुभकामनाएं अहिंसा प्रेमियों के लिए, वो अपने निश्चय पर रटे, गांधी जी को इस क्षेत्र में फॉलो करें भाई, अहिंसा परम धर्म। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। धन्यवाद प्रहलाद नारायण व्यास शुक्ला जी, प्रयागराज में बहुत सारे लोगों की दुआएं आप तक पहुंच रही हैं।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK. भाई अगर आप भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो उनकी तरफ से आज का रेट हम बताते हैं. दे आर गिविंग 126.5 रुपीस. भारतीय मुद्रा में 126 रुपए 50 पैसे का रेट वो दे रहे हैं. यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप. एक पाउंड का रेट 126 रुपए 50 पैसे. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई.
2: ये है लाइका गोल्ड.
3: Hi, clairvoyance here. How may I be of prediction?
4: I'm wondering about my future retirement.
3: You and me both. Well, I'm seeing an app, the HMRC app. You open it and there it is, your state pension forecast.
4: What about gaps in my national insurance record?
3: Well, you can see and fill those. Oh, and it's handy for tax refunds.
4: Right, thanks.
3: The pleasure's yours. Now download the HMRC app for your money and tax. You're on it.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: Creative's team events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
4: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
3: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
4: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
3: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
4: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
3: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
4: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
1: On this week's Leica Extra podcast, Ruby Raza discusses foster care among South Asians.
2: If I was speaking to foster carers, I would say that you don't need to be perfect. You need to be present. You need to have the empathy to start and do the caring of foster carers are regarded as professionals. If you think you can, you can.
3: Yeah, true.
2: Just try it.
3: There's a will, there's a way.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: Hum se sasta kahi nahi mil sakta.
5: Travel Hub.
4: At all protected.
1: Leica.
6: Tasty track of the hour brought to you by Kuka Noodles.
7: Aur sahab, ye jo track hai na, ये याद दिलाता है जो सवाल पूछा हमारे श्रोताओं ने कि जय जवान जय किसान क्या वह अभिप्राय उसका किसका दिया हुआ यह नारा था। तो आपको बता दें कि 1962 में चीन के हाथों बुरी तरह से प्रताड़ित होने के हारने के बाद भारत जो है तैयार नहीं था युद्ध के लिए। शांति की बातें चलती थी, पंचशील का सिद्धांत भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जो है पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, शांति दूत कहलाने लगे थे, लेकिन शांति दूत को ऐसा झटका मिला कि भाई वो 1962 में भारत की फौज, भारत के नेता, भारतीय लोग उस जंग के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए चीन के हाथों करारी हार मिली। उसके बाद भारत के दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान ने सोचा कि जो चीन से हार सकता है, चीन उसे हरा सकता, हम भी हरा सकते हैं। और सब क्या हुआ कि 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। अब लगा कि कोई अनुभवी नेता नहीं है भारत के पास और उसकी फौजी तैयारी भी वैसी नहीं है, 62 में वो हार चुके हैं। ये नहीं पता था कि उस हार के बाद बहुत सबक सीखे भारत ने। जंग हुई 1965 में और उस युद्ध का नतीजा पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद जब शांति स्थापित हुई तो भारत के नेता लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फौजी डिक्टेटर भैया अय्यूब खान जो है मिले ताशकंद में, ये रशिया में उस समय के सोवियत संघ में बातचीत हुई और युद्ध थम गया। जो फैसले हुए उसके बाद शास्त्री जी की हृदय गति रुक जाने से कहते हैं, हालांकि अभी उस पर भी बहुत बहस है, डेथ हो गई। पर डेथ से पहले जैसे वो कौम को जिंदा कर गए, वो पूरे देश को जगा गए। उन दिनों अनाज की भी कमी थी देश में और भाई धन की भी कमी थी, लेकिन देश के लोगों में जो जागृति आई, जो जज्बा जगाया शास्त्री जी ने, वो यादगार बन गया। भारत एक सशक्त देश बन गया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसी ने देश जगा दिया। 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती है, तो शास्त्री जयंती भी है आज। उन्हें भी हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, स्मरण करते हैं।

0: जय जवान जय किसान।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Goga Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और भाई मैसेज आया है भास्कर जी का। भास्कर जी कहते हैं रोज आपका कार्यक्रम सुनता हूँ, नंबर आपका केनिया का है। भाई वहाँ भी लोगों को हमारे साथ जुड़िएगा। कहते हैं मुझे आपके रेडियो के बारे में जानकारी किन्होंने दी? भरत गंगाराम जी ने। भरत जी थैंक यू वेरी मच, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप ये। और बहनों भाइयों उन्होंने भी एक गीत सुझाया है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है कि जहाँ लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, और गांधी जी का स्लोगन नारा संदेश दुश्मन से भी प्यार करो।

0: भाई ऐसे ऐसे गीत सुन के लगता है जैसे कि हम रेडियो भी सुन रहे हैं और कोई सत्संग सुन रहे हैं, कोई सात्विक प्रवचन सुन रहे हैं भाई, जीवन पर प्रभाव डालने वाले संदेश हैं ये।
1: This is Like a Gold. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: Like a Radio Network पर ये है Like a Gold Radio, Golden गीतों का खजाना. Like a Radio Midlands.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra Podcast Update.
3: हमारा नया एपिसोड आ गया है भाई लाइका एक्स्ट्रा पर. दिस इज इनसाइट्स इनटू फोस्टर केयर और भाई इसको होस्ट कर रही हैं रूबी रजा और फ्रॉम फोस्टरिंग वर्सेस एडॉप्शन. ये दोनों बातें भाई अप्रूवल प्रोसेस जो है उसका, उसके बारे में और भी जो पर्याप्त जानकारी है इससे जुड़ी ही वो सारी आपको इसमें उपलब्ध मिलेगी. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमएसएन, एप्पल एंड दूसरे जो मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ आप इन्हें देख सकते हैं.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Okay, Nico, got some traffic up ahead, so let's box, box, box into BP to fuel up and grab a coffee.
5: Even F1 drivers like Nico Hülkenberg do everyday driving. That's why the Audi Revolut F1 team recommends BP Ultimate with active technology.
4: Grab us a sausage roll while you're in there. Nico? Hello?
5: Choose BP Ultimate for up to 375 more miles per year. Distance may vary due to factors like driving style, vehicle load and weather, based on continuous 6,400 miles per year use. See bp.com/ultimate.
1: Ye hai
2: Leica Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.

0: कर लो क्या करोगे, जाओ जाओ जाओ जाओ, डूब के मरने जा रहे हैं। Doom-a-ro.
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do Currency the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Pakistan, like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: Currency rate, Slam 5 के मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिए भाई। इस समय जो रेट चल रहे हैं, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 126.99 रुपीस, पाकिस्तानी 365.94 रुपीस, श्रीलंकन रुपए दे रहे हैं 437.77, बांग्लादेशी टके 162.95, अफगानी 85.16 एंड केनियन शिलिंग्स 171.45।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of £101.78 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
4: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
3: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
4: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
3: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947।
4: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116।
3: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
5: Sunshine, skyscrapers and souks.
6: For less than you think. This is Affordable Dubai from South All Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: South All Travel. Pay less, enjoy more.
6: South All Travel. At all price. Protected.
7: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
9: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
10: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र।
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
12: टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
14: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
15: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
16: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
11: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
17: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
11: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
17: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
11: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
18: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
19: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
18: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
20: Manoranjan with Ravi Sharma.
21: Baat bata mere yara, main soch soch ke hara.

0: छू बंद कर रेडियो।
1: नहीं करू कीधू ने।
0: अरे कहू छू बंद कर, मैं टीवी जोऊ छे।
1: तमारे जे जोऊ है ते जुओ, समझा ने। ज्यां सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू।
0: एटले
1: शू? वार छोड़ीस, घर छोड़ीस, पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू। ना, एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू।

0: बैक टू बेसिक्स संगीत में दो गीत आपने सुने भाई, ये दोनों गीत में उन दो बच्चियों के नाम करना चाहता हूँ, नाम ये नहीं याद आ रहे हैं। और ट्रेन में बैठे बैठे बातें चली तो भाई क्या करते हैं अब, बहुत छोटी बच्चियाँ, स्कूल की बच्चियाँ अपनी टीचर के साथ जा रही थी और ट्रेन में मिले थे मुझे कल, दोनों प्यारी बच्चियों का चेहरा जो है ना वो अंकित हो गया अंकल के दिल पर। और बेटियों, एक तो एक का नाम तो शायद था मनरीत, हाँ, और दूसरी का नाम गुजराती दीकरी, तमरा नाम भूल ही गया छो, बुढ़ऊ थी गया छो हवे। लेकिन बिटिया, आप दोनों ने क्या इंप्रेशन छोड़ा जब वो गुजराती दीकरी ने कहा कि ऑटोग्राफ दे दो? मैंने कहा भी इतनी छोटी बच्ची, उसने जब पूछा क्या काम करते, रेडियो करता हूँ भाई, शोगा ऑटोग्राफ दे दूँ। अब साहब ऑटोग्राफ, मैं मेरे पास तो पेन नहीं है, ऑटोग्राफ कहाँ से दूँ? तभी भाई वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मैं एक अंग्रेज लेडी सुन रही थी, दूर सुन रही, थोड़ी सी दूरी पे सीट पे बैठी, फट पेन लेके आ गई, आप इन बच्चों को ऑटोग्राफ दो, गिव देम ऑटोग्राफ। उसके बाद भाई मैंने कहा पेन तो आ गया, पेपर नहीं है। और इतनी देर में एक लेडी दो बढ़िया खूबसूरत पेपर्स जो है सख्त वाले वो कागज़ लेके आ गई, इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी की मेक देम हैप्पी। और भाई मैं था नहीं लेकिन सेलिब्रिटी महसूस किया मैंने, हमेशा मुझे सेलिब्रिटी लोग बना देते हैं, आते जाते मिलते जुलते घूमते फिरते, एंड आई रियली फेल्ट सेलिब्रिटी एट दैट। तो भाई दोनों बच्चे और उनकी टीचर स्कूल की, साउथ हॉल में LNB प्राइमरी स्कूल है LNB रोड पर, तो वहाँ से वो भाई मिले थे मुझे और उन्होंने इनवाइट किया उनकी टीचर को, उन बच्चों को, सबको भाई बहुत बहुत प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद, टीचर को आशीर्वाद नहीं, बच्चों को आशीर्वाद। थैंक यू वेरी वेरी मच भाई। क्या कहते हैं, चलते चलते यूँ ही कोई मिल गया था, सरे रहा चलते चलते, ऐसे ही मुलाकात होती है। और भाई फिर बहुत सारे लोग मिले हैं ज़िंदगी में, बहुत पीछे भी मैं कई बार जाता हूँ तो मुझे उन दिनों की भी याद आती है जब मैं बहुत छोटा था, कोई कोई मुलाकात अंकित हो जाती, लिखी जाती है दिल पर, वहाँ तक याददाश्त का भाई घोड़ा जो है वो कई बार पहुँच नहीं पाता है, लेकिन कई बार जो है जाके लौट आता है वहां से। तो बहुत सारी बातें याद, उनमें ये भी एक बात और शामिल हो जाएगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. They say that send the money to India, your people, your friends, your family members. By the rate is good today. And how much they are giving for £1? 126.5 Indian rupees. 126 rupees aur 50 paise. You can transfer via branch, online or by using the YONO SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Sunshine, skyscrapers and souks.
3: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protected.
4: तेरा क्या होगा रे कालिया?
5: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
4: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
6: जब पूनम की स्वीट्स मंगवा ली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
7: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 0208574-4934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
8: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज केटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे। कॉल ऑन 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: लंडन हलो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10 थी 20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली एडल्ट टिकट्स 10 पाउंड्स 16-17 अने 18 अक्टूबरे 15 पाउंड्स 5 थी 10 वर्ष ना बाड़को ने 5 पाउंड्स अंडर 5 फ्री 11 रात नो सीजन पास 100 पाउंड्स रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा एटले बेस्टम बेस्ट।
10: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
11: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
10: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
11: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
10: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
11: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
10: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
11: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 0208-426-0678
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Oh, look at that bump. You're glowing.
14: Oh, thanks.
13: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
14: Oh, no, not yet.
13: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
15: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong, get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.
16: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and laikagold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: भाई आर्टिस्ट ऑफ द वीक कौन है? कौन है इस सप्ताह? हैं हैं भाई, लेकिन पहले हम बता दें हरीश सालवे का आज जन्मदिन है। कौन है हरीश सालवे? हरीश सालवे साहब टॉप के वकील हैं, वर्ल्ड में जाने माने, और भारत की ओर से भारत का पक्ष रखते हैं बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में, और कामयाब होते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट्स में या यहाँ यूके में अमेरिका में। भाई इन्होंने बहुत सारे केस लड़े हैं कामयाबी पूर्वक, और मज़े की बात यह है कि भारत सरकार के कुछ एक केसेस में इन्होंने फीस नहीं ली, ली है जैसे मैंने ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शो की फीस। यू नो हाउ मच दैट वाज? 1 पाउंड। रिटर्न है कॉन्ट्रैक्ट में 1 पाउंड, लेकिन ये हरीश सालवे ने भी एक केस लड़ने की फीस 1 रुपया ली थी। और भाई इनका आज जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हरीश जी। इसके अलावा आज जन्मदिन आशा जी मना रही, आशा पारेख, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मैडम। के मैनन केरला के एक एक्टर हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं और कई बार विलेन या कई बार सहायक अभिनेता के रूप में ये नज़र आते हैं फिल्मों में। और आज ही रचिता राम, ये इंडियन एक्ट्रेस हैं कर्नाटक की, तो इनका भी जन्मदिन है। ये जन्मी थी 1992 में। हिना खान श्रीनगर की ये लड़की है और ये भी एक्ट्रेस हैं भारतीय सिनेमा में, 1987 में श्रीनगर में जन्मी थी। और भाई ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि शास्त्री जी और गांधी जी की आज जयंती है तो उनके भी जन्मदिन हैं। शास्त्री जी जन्मे थे 1904 में और गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 यानी 1869 में पोरबंदर में। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इनका जन्मदिन नहीं है लेकिन ये इस सप्ताह के कलाकार हैं जिनका नाम है कैफी आज़मी। तमन्ना यही है कि आपकी शायरी को हम चाहेंगे। सराहेंगे, पढ़ेंगे। तमन्ना यही है।

0: बेताब दिल की तमन्ना यही है, कैफी आजमी साहब की भाई शायरी, उनकी उनका लिखा गीत। भाई गीतकारों के लिए एक प्रॉब्लम जो कैफी आजमी साहब ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी, और बाद में उन्हें अपने जो है दूसरे शायर भी दोहराते रहे, वो कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में अजीब चलन है, पहले वो धुन बना लेते फिर कहते हैं इन पे शब्द बिठाओ, यानी गीत लिखा हुआ होगा उसको संगीत बद नहीं करेंगे, संगीत बना हुआ होगा उस पर शब्द बांधिए। कहती ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भाई वो कहते हैं कफन हमने सील के रखा हुआ है, कोई मुर्दा ढूंढ के लाओ साइज का। कैफी अभी आजमी साहब ने कहा था, कहते इसीलिए भाई पहले वो कफन तैयार कर लेते हैं फिर हम मुर्दा ढूंढ के लाते हैं, मुर्दा उनके लिए तैयार करते हैं, और यही कारण है कि कभी मुर्दे की टांगें बाहर रह जाती हैं, कभी उसके हाथ बाहर रह जाते हैं, कभी ओवर कवर हो जाता है। क्या बात है। कैफी आजमी साहब इस सप्ताह के गीतकार, इस सप्ताह के आर्टिस्ट रहे, और बहुत सारी उनकी रचनाएं आपने सुनी भाई, और मुझे यकीन है कि सराही भी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सप्ताह देखते हैं कौन होंगे आर्टिस्ट ऑफ द वीक। पर कैफी साहब की और रचनाएं अभी दो दिन और सुनने को मिलेंगी आपको।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: कभी आपका चालान हुआ है गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए? अरे हम अपनी औकात की बात करें, साइकिल चलाते हुए चालान हुआ कभी? भाई एक बार पुलिस वाले ने पीछे से आवाज़ दी, रात का वक्त था, रोको रोको रोको। अपुन ने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी, कहता रोको रोको। हमने नहीं रोका, भाग के पकड़ लिया भाई उन्हें पीछे से।

कहता कैसी आवाज ना थी है? साइकिल में लाइट नहीं है, रात को चला रहे हो है? हमारा जवाब था रोशनी हो ना सकी, दिल भी जलाया हमने। मैं परेशान हूं, कहते अंदर चलो।

0: कोई कोई बुजुर्ग महिला बड़ी बहस करती है भाई, उनकी गाड़ी रोकी तो बेटा गाड़ी चला रहा था, बेटे को बात ही ना करने दे, कहती मैं बात करती हूँ, कहती बेटा चालान करना जरूरी, कहता माता जी चालान तो करना पड़ेगा, गाड़ी में ना लाइट है ना हॉर्न काम कर रहा है ना टायर ठीक है, कहती फिर ठीक ठीक पैसे लगा ले, कितने पैसे देने, उसने कहा कि चालान होगा कम से कम भी 2000 रुपये का, कहती देखो ठीक ठीक पैसे लगा ले, ऐसा कर बेटा इसको 200 रुपये दे दे, माता जी 2000 रुपये कम से कम लगेंगे, चालान की फीस इतनी होती है, क्या बात करता है, देख बेटा मैं तो हमेशा ही ना इधर से गुजरती हूँ और हमेशा तुमसे ही चालान, मेरी सारी फैमिली तुमसे ही चालान कटवाती है, मैं तो अपनी जिठानी को भी कहूँगी कि ये भाई है ना पुलिस वाला, ये बहुत अच्छे चालान काटता है बहुत कम फीस में, तो इसलिए अगर चल दो इसको 250 रुपये दे दे, ऐसा करती है महिलाएं भाई, भाव ताव करने में इनका जवाब नहीं है, कहते ठीक ठीक लगा ले, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती है, जैसे तुम जो मांगे पैसे इतने कौन देगा इतने पैसे। और भाई एक वो टैक्सी में बैठ के आई ना इलफोड़ से माई, हाँ तो कहता पूछी कितने पैसे, कहता माता जी 50 पाउंड बन देने, 50 पाउंड मैं नहीं देने 50 पाउंड, एले 25 फड़, कहता एकदम आधे 25 पाउंड, हाँ 25 पाउंड तू नहीं बैठ के आया, तेरे भी तो 25 पाउंड हो गया ना, था 50 पाउंड 25 तेरे 25 मेरे।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और साहब कुछ एक सूचनाएं शायद आ गई हैं सामने स्क्रीन पर, आपके साथ साझी करें भाई। इनमें से एक तो ये है, क्या है ये है, पढ़ लो। अच्छा मैं बता देता हूँ भाई, सूचना ये है कि क्रेजी फॉर किशोर ये शो हो रहा है दिवाली स्पेशल, फीचरिंग द मोस्ट मेलोडियस ट्रैक ऑफ किशोर कुमार, एट्रीब्यूट राइट विद द 515 लाइव बैंड ऑन फ्राइडे 6 नवंबर एट द प्रिंस रीजेंट होटल, टिकट्स एट eventbrite.co.uk, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स ऑफ कोर्स लाइका रेडियो नेटवर्क। और इसके अलावा भाई एक और शो की बात करें, और वो शो है अपने बहुत ही प्यारे और न्यारे कॉमेडियन सिटी नाम आर यार कितनी बार मना किया, हाँ तो वो शो है वो अपना सुनील ग्रोवर लाइव, कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th October एंड लेस्टर एट मेट्योली अरीना ऑन सैटरडे 31st October। टिकट्स एट AXS, इवेंट ब्राइट एंड

0: बड़े खूबसूरत हैं हम नौजवान, हमें लोग कहते हैं जाने जहां। इसलिए हमने कहा हमको अपना बना लो तो कैसा रहे, अपने दिल में बसा लो तो कैसा रहे। हमको अपना बना लो तो कैसा रहे, अपने दिल में बसा लो तो कैसा रहे। मुस्कुरा करके बोली वो यूनादिनी,
1: भैया राखी बंधा लो तो कैसा रहे, भैया राखी बंधा लो तो कैसा रहे।
0: छोड़िए क्या रखा सच्ची बात।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Yes, you can send money by, but before let me tell you the rates. Today they are giving for £1 in Indian currency 126.94 rupees, Pakistani 365.77 rupees, Sri Lankan 436.81, aur Bangladeshi take 162.42, Afghani 85.17, and Mauritian rupees 63.57.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 101.7 pounds per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: विमल रायन जी, जो गीत पसंद आए आप ही के लिए है, रख लीजिएगा, हाँ फ्री है, गिफ्ट हमारी ओर से। ओके, और भारती जी थैंक यू वेरी मच, आपको भी गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, आपको चिंतन भी पसंद आया, वो आपके नाम था। दिनेश पोपट साहब, मुकेश जी का जब भी स्वर बजता है आपका नाम हमारे दिल में सजता है, याद आती है आपकी। और अहीर गुनोवा जी थैंक यू वेरी मच, आपको भी हमारा प्रणाम पहुँचे। गुरुदेव गांजा जी, सो नाइस ऑफ यू। और साहब मानसी आप भी सुन रही हैं मुझे पता है। और भाई हमारे पम्मी सिंह स्लाव में हमारे साथ जुड़े प्रदीप सोलंकी, थैंक यू वेरी मच। सुखी, वाई आर यू सो दुखी, आपकी पसंद का गीत नहीं आया, चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा भाई हमारी स्वीटी कालड़ा जी कहती हैं, भूल गए वो दिन, आज बातें कर रहे हो कि कफन तैयार है, मुर्दा ढूंढ के लाओ, हाँ मुर्दा ढूंढ के। कैफी आजमी साहब ने कहा था, लेकिन कहती हैं वो दिन याद करो जब हम बराबर शो किया करते थे। रियली भाई, पीछे अतीत में झांक कर देखते हैं, अब जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग याद भी आते हैं और हम दिल में ढूंढते हैं तो मिल भी जाते हैं।

0: थैंक यू वेरी मच भाई, बड़ा स्वीट गीत सुनवाया स्वीति जी आपने, याद दिलाते, थैंक यू। और भाई ये हैं हमारे अमीन मोहम्मद साहब किंग्सबरी में, कहते हैं रवि साहब आप ये जो हंसा रहे हो ना, ये सुन करके मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि आज बुधवार है। भाई बुधवार को ठीक है कि ठहाके गुजाते हैं हम जोक सुनाते, लेकिन अब दिल करता है कि वो कहावत सही कर दें जो किशोरदा ने कहा है ना,
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: लेकिन भाई हम हंसी वाले वो चटपटे गीत सुनवाते हैं, तो कभी कभी चिंतन में या कुछ गंभीर गीत सुनवाकर आंखों से आंसू भी गिरवाते हैं।

इश्क एक तरफा से ही मसरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होगी शमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर मांगू तो मांगू तुम न मुझे कुछ देना, मैं अगर मांगू तो मांगू कुछ ना तुम देना मुझे, वरना एक प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना एक प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं।

अगर रोऊं तो रोऊं। तुम अश्रु बिंदु न ढालना, आंखों से बिंदु मत गिराना, वरना नजरों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। कवि बिंदु की लिखी हुई लाइनें।

0: याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। ऐसे ही तो नहीं दीवाने हैं हम रवि साहब की धुनों के, संगीतकार रवि और लता जी की आवाज बहुत याद आते हैं रवि।
1: Like our gold. Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place.
2: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
3: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
5: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
4: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: We're finally going home for the wedding.
8: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
9: Save an extra 10% with code ROAMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
10: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
11: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: Share festive sweetness with Haldiram's.
14: Kaju Katli, Coconut Barfi, Gulab Jamun, Mysore Pak, Milk Cake, Rasgulla and more. A taste of home.
13: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
15: Haldiram's.
16: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: हमने किया था जिनसे बहुत प्यार टूट के, वो बन गए हैं देखिए अगियार टूट के। वो यार दोस्त सब के सब हैं हो गए विदा, चाहा था जिनको हमने कभी यार टूट के। चलते चलते कहते हैं चलने की बात क्यों करते हो, मिलने की बात करो ना। अरे साहब चलेंगे तभी तो मिलेंगे।
1: चलते चलते
0: फिर मिलेंगे। हमारी आपकी अगली मुलाकात सोमवार को 10 बजे की खबरों के बाद। आपके लिए एक सुपर्ब वीकेंड की कामना करते हुए आपका दोस्त रवि शर्मा अब इजाजत चाहता है।

0: Boys. Boys. Body Brumba.
1: Okay, so there is so much to say about the life of Asha Bhosle. I mean, Asha Parekh. I always make that mistake because I've always been very close to Asha Bhosle ji. So, when Asha naam aata hai, to Bhosle saath mein aa hi jata hai. Lekin main koshish karunga next 2 hours, I'm just gonna say Asha Parekh, Asha Parekh, Asha Parekh. Yes, born on 2nd October 1942. She is 84 years young and still looking so ravishing. I'll tell you so many things you don't know about Asha Parekh ji. Ji haan, इन्होंने बचपन में ऑफ कोर्स बेबी आशा पारेख के नाम से शुरुआत की थी. एवरीबडी नोज दैट. एंड इनके पिताजी के बारे में बात करेंगे, इनकी माताजी के बारे में बात करेंगे, डैडी का नाम और मम्मी का नाम, एंड देन वी शैल गो फर्दर. लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि देर वॉज वन बिग विलन इन हर लाइफ. एक ऐसा विलेन इनकी लाइफ में आया जिसने बहुत दिल दुखाया उनका, उनको परेशान बहुत किया. लेकिन दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ आई वुड से अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. किसी ने इनको दुखी किया एंड इट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. कैसे, चलो मैं बताता हूँ आपको. अभी आशा पारेख फिल्म्स एज बेबी आशा पारेख. ओके, सो 10 साल की उम्र में बिमल रॉय ने उनको देखा एक स्टेज पे और बड़े प्रभावित हो गए. एंड देन बिमल रॉय वॉज कॉल्ड टू बॉम्बे फ्रॉम कोलकाता, तब कैलकाता था. वो बॉम्बे आ गए टू बॉम्बे टॉकीज टू डायरेक्ट अ फिल्म कॉल्ड माँ. जी हाँ, ये फिल्म माँ 1952 की फिल्म, उसमें उन्होंने आशा पारेख को एक बच्ची का रोल दिया था. एंड हर एक रोल जो उनको एज अ चाइल्ड स्टार दिया गया था वाज आल्सो बिकॉज ऑफ हर डांसिंग स्किल्स. बचपन में ही काफ़ी तालीम पाई थी डांसिंग की. नाउ एक साल के बाद वो फिल्म माँ जब डायरेक्ट की, तब बिमल रॉय ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया. और वो प्रोडक्शन हाउस शुरू करते ही इन्होंने एक फिल्म बनाई थी विच वॉज दो बिगा ज़मीन, विच वॉज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड. एनीवे, 1952 में एट द एज ऑफ 10 आशा पारेख एज आशा, बेबी आशा पारेख इन फिल्म माँ. दूसरी फिल्म थी 1952 में दलसुख पंचोली. दलसुख पंचोली नाम याद है आपको? बताता हूं मैं. पायनियर ऑफ फर्स्ट पंजाबी फिल्म एवर डन. एंड ही गॉट 13 ईयर ओल्ड बेबी नूर जहां टू एक्ट एंड सिंग इन अ फिल्म कॉल्ड गुल बखावली, 1939 की फिल्म. नूर जहां, दैट्स राइट, 13 साल की थी वो. दलसुख पंचोली ने उनको फिल्म में डाला था. तो दलसुख पंचोली ने एक फिल्म डायरेक्ट की विच वॉज कॉल्ड आसमान, 1952 की. तब आशा पारेख वॉज 10 ईयर्स ओल्ड. एंड देन व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आई वुड से, जिनका नाम था व्रजलाल जगनेश्वर, लेकिन हम उनको एक नाम से पहचानते हैं जो है विजय भट्ट. आपको मालूम है ना विजय भट्ट? नहीं मालूम? मैं बताता हूं. जिन्होंने मीना कुमारी को डिस्कवर किया, माहजबीन बानू को बेबी मीना करके लेदर फेस फिल्म में किरदार दिया. डिस्कवरी ऑफ मीना कुमारी वॉज बाय नन अदर देन विजय भट्ट. अब विजय भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की. एंड उसमें 11 साल की आशा पारेख थी. उसमें एक दूसरी लड़की भी थी जो बाद में हीरोइन बनी, वो लड़की थी अमिता. अमिता मालूम? उसका रियल नेम कमर सुल्ताना. शी वॉज द हीरोइन ऑफ गूंज उठी शहनाई, 1959 की गूंज उठी शहनाई. अभी द होल स्टोरी ऑफ आशा पारेख, अमिता, विजय भट्ट रिवॉल्व्स अराउंड ऑल द हार्ट एक्स दैट आशा पारेख गॉट, वो आगे जाते हुए मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन गूंज उठी शहनाई में शी वॉज रिजेक्टेड सेइंग शी इज़ नॉट स्टार मटीरियल। इसके पीछे कौन था? लोगों ने कहा विजय भट्ट ने ये बोला था एंड विजय भट्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल, बट इट वॉजंट विजय भट्ट, देर वॉज अनदर मैन। हु वॉज ही? आगे जाते हुए मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं 11 साल की आशा पारेख, जिन्होंने 1953 में श्री चैतन्य महाप्रभु में एक्टिंग की। फिर आई 12 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में बिमल रॉय ने बाप बेटी फिल्म बनाई 1954 की, वो इतनी अच्छी नहीं रही। वहाँ आशा बेबी आशा पारेख का दिल टूट गया, उसने कहा मैं स्कूल वापस जाऊंगी और तालीम पाकर फिर वापस शायद मैं एक्टिंग के लिए आऊंगी। मीन टाइम दूसरी फिल्में जो की थी वो थी, एक थी धोबी डॉक्टर, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय बिमल रॉय, अगेन बिमल रॉय ने गुजारिश की एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय फानी मजुमदार, 1954 की फिल्म जिसमें किशोर कुमार थे, उषा किरण। सो छोटी ईशा किरण जब फिल्म में दिखाते हैं वो थी आशा पारेख। उसमें जगदीप भी थे, जगदीप का रोल था एज अ बेबी एज वेल, अ बॉय एज वेल, अ लिटिल बॉय हु ग्रू अप टू बिकम अभी भट्टाचार्य इन द फिल्म दैट वाज धोबी डॉक्टर। तभी 12 साल की उम्र थी आशा पारेख की। और फिर 14 साल की उम्र में अयोध्यापति, दैट वाज डायरेक्टेड अगेन बाय विजय भट्ट। अभी यही आदमी विजय भट्ट इतने अच्छे चांसेस दे रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु में, अयोध्यापति में, वो क्यों आशा पारेख का काम बिगाड़ेगा? लेकिन वही आदमी था जिसने उसको इस फिल्म से निकाला था, गूंज उठी शहनाई, ये कहकर के ये स्टार मटेरियल नहीं है। कुछ दिन शूटिंग चली थी उसके बाद उसको निकाला गया आशा पारेख को। क्यों, कौन था इसके पीछे, मैं बताऊंगा। 14 साल की उम्र में अयोध्यापति, दैट वाज विजय भट्ट, एंड देन 15 साल की उम्र में 1957 में आशा पारेख ने उस्ताद फिल्म में किरदार निभाया, डायरेक्टर वाज धीरूभाई देसाई। अब भी 15 साल की उम्र में 1957 में एक फिल्म थी आशा, आशा में शी जस्ट डिड अ स्मॉल अपीयरेंस, मतलब स्पेशल अपीयरेंस तो नहीं बोलते लेकिन अ स्मॉल अपीयरेंस बाय आशा पारेख। यू नो व्हाई? विच वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर, बिकॉज इट गेव हर द अपॉर्चुनिटी टू डांस अलोंगसाइड हर रियल लाइफ आइडल वैजंती माला। दैट्स राइट, फिल्म आशा में वैजंती माला वॉज द हीरोइन। वहां पे एक डांस था, एक गाना था उसमें राधा और कृष्ण का, और कृष्ण का रोल निभाया आशा पारेख ने और राधा का रोल निभाया वैजंती माला ने उस डांस में। डायरेक्टर वॉज एम वी रमन। बस यहाँ पे मैं बात ख़त्म करता हूँ, आगे हम गाने सुनेंगे एंड देन आई एम गोना कॉल अ गेस्ट। यू नो 1st of November में रॉयल आल्बर्ट हॉल में देर इज़ गोना बी अ बिग धमाका विद कविता कृष्णमूर्ति एंड उनको लाने वाले हैं सनातन इवेंट्स। उनके एक गेस्ट है, उनको मैं बुलाऊंगा और हम बातें करेंगे। सुनते जाइएगा, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। हैव अ वंडरफुल फ्राइडे एंड जुड़े रहिएगा ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can fetch you up to 126.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone. sunshine, skyscrapers and souks.
4: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected.
5: No, sorry, mate.
6: No, we don't have that part.
7: Have you tried down the road?
8: We can get it in, but it won't be for a few days.
9: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovan.
10: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
11: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026.
12: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
11: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न.
12: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो.
11: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी.
12: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG.
11: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk.
12: सेगा नवरात्रि, भक्ति मस्ती और गरबा.
13: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
14: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
13: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
14: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
13: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
15: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
16: Wow! So sending money to India is instant.
15: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
17: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store.
18: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
19: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
21: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better

0: to Cajal on Breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Gold Afternoons.
2: Gold Afternoons.
1: Proudly sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhal jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Two businesses,
6: same town,
5: same service.
6: One appears on page one of Google,
5: the other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
8: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
7: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
8: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
7: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756194.
8: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियो रामा 0208-907-0116.
7: दिवाली का जश्न अपनों के संग.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
10: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
7: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
10: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में. यूके में पहली बार
7: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन.
10: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा.
7: शाम 7 बजे डोर्स ओपन.
10: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 0208426-0678.

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner.

0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

0: And here we go with some stories of आशा पारेख. अब सबको ये मालूम तो है कि she started off as baby आशा पारेख and then made her way further up. अब इनके पिताजी बच्चू भाई पारेख एंड इनकी माताजी जिनका नाम सुधा लेकिन रियल नेम सलमा. शी वॉज अ बोरा मुस्लिम एंड शी वॉज द वन बिहाइंड आशा पारेख्स सक्सेस. ऑफकोर्स डैडी तो बैकअप देते ही थे लेकिन माँ ने उसको भेजा फॉर क्लासिकल डांसिंग. द टीचर पंडित बंसीलाल भारती amongst many others. I know all the names of all the pandits that she'd been to, but if I go into that to bahut lamba discussion ho jayega. Jaise Bimal Roy ne unko dekha aur fir film Maa mein 1952 ki film jo thi usme unhone unko rakha, and then dusri jo film thi Baap Beti usme she was so disappointed because the film flopped. फिर उसके बाद शी फिनिश्ड हर स्कूलिंग. मीन टाइम शी जॉइन द एक्टिंग क्लासेस ऑफ सशाधर मुखर्जी. सशाधर मुखर्जी ऑफ कोर्स बिग नेम एंड वहाँ पे इनको एक अच्छी सी न्यूज़ मिली थी. व्हेन शी वाज डूइंग द स्कूलिंग 16 साल की उम्र में उनको पता चला कि राजेंद्र कुमार की एक फिल्म है गूंज उठी शहनाई जहाँ पे इनको हीरोइन का रोल दिया जाएगा. एंड शी वॉज सो हैप्पी एंड इलेटेड एंड शी वॉज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड गिविंग एवरीथिंग शी गॉट बिकॉज शी वॉज बाय दैट टाइम अ वेरी गुड क्लासिकली ट्रेन्ड एक्ट्रेस एंड इतनी फिल्में करके एक्सपीरियंस भी मिला था एक्टिंग का. कुछ दिन शूटिंग चली गूंज उठी शहनाई की लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको निकाला गया. आशा पारेख को फिल्म से निकाल दिया गया और कमेंट आई कि शी इज नॉट स्टार मटेरियल और उसकी जगह रखा गया अमिता को. अब एवरीबडी फेल्ट विजय भट्ट वॉज वेरी अनफेयर जबकि दो फिल्में एज अ चाइल्ड स्टार इन्होंने की भी थी डायरेक्ट. लेकिन ऐसा क्यों किया बाद में तहकीकात करने के बाद पता चला कि द हीरोइन जिसने उसको रिप्लेस किया अमिता उसको चाहने वाला एक बंदा था एज अ प्रोटेजे. ही वॉज द ओनर ऑफ फिल्मिस्तान स्टूडियोज. वो ओनर का नाम था तोलाराम जलान. अब तोलाराम जलान उसका टाका बिड़ा हुआ था अमिता के साथ. अमिता उसका रियल नाम था कमर सुल्ताना. शी डन मैनी अदर फिल्म आफ्टरवर्ड्स लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये फिल्म में जब रिप्लेसमेंट किया अभी प्रोमोटेड हर इन तुमसा नहीं देखा. पहली फिल्म जो थी 1957 में उस फिल्म में अमिता को तोलाराम जलान ने प्रोमोट किया बिकॉज ही यूज टू लुक आफ्टर हर वॉर्डरोब. ही यूज टू लुक आफ्टर हर मेकअप. ही यूज टू लुक आफ्टर हर पब्लिसिटी. सो मतलब कुछ तो वहाँ हो रहा था रोमांटिक लेकिन नोबडी कुड पुट अ फिंगर ऑन इट. पर पता चलता था कि तुम सा नहीं देखा जो नासिर हुसैन की फिल्म थी and Sashadhar Mukherjee, they all had an experience going through Tumsa Nahi Dekha and they did not want Amita back again after that experience in Tumsa Nahi Dekha. Lekin Tolaram laga hua tha, usne Asha Parekh ko nikal diya. Asha Parekh ko usne nikalwa diya aur Vijay Bhatt ko kaha ki isko nikalo. Because he was the financier, paisa sab usi se aata tha. तोलाराम जलान से. तो तोलाराम दी ओनर ऑफ फिल्मिस्तान स्टूडियोज वॉज बिहाइंड द होल थिंग के आशा को वहाँ से निकाला. शी वॉज सो डिस्ट्रॉट, शी वॉज सो अपसेट. उसने सोचा कि अब मैं ज़िंदगी में कभी काम नहीं करूँगी, आई विल नेवर एक्ट इन फिल्म्स. बट शी वॉज गोइंग फॉर एक्टिंग क्लासेज एट सशादर मुखर्जीज और वहाँ से गुल्ली मारती थी. लेकिन तकदीर का करना, दिस इज़ द बिगेस्ट केस ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. उसको वहाँ से निकाला, उस फिल्म से गूंज उठी शहनाई से निकाला. 8 दिन के बाद गुड न्यूज़ आई. 8 दिन के बाद चुना गया दिल देखे देखो विद शम्मी कपूर. और दिल देखे देखो 1959 में उसने जब एक्टिंग किया, फिल्म वॉज सुपर डुपर हिट. इट केम आउट एट द सेम टाइम एज गूंज उठी शहनाई, सेम ईयर. लेकिन ये फिल्म इतनी चढ़ी, गूंज उठी शहनाई वॉज ऑल्सो अ म्यूजिकल हिट और अमिता का भी काम हो गया था, लेकिन नॉट एज बिग एज आशा पारेख. आशा पारेख को नासिर हुसैन ने, जिनके साथ इन्होंने ऑफकोर्स दैट वॉज अ लव ऑफ हर लाइफ, द ओनली मैन इन हर लाइफ. अभी दिल देखे देखो के बाद 6 फिल्म में साइन कर दिया. जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तीसरी मंजिल अगेन विद शम्मी कपूर, बहारों के सपने, फिर शशि कपूर के साथ प्यार का मौसम, जितेंद्र के साथ कारवां, एंड देन अ कैमियो रोल इन मंजिल मंजिल, फिर राज खोसला ने 2 बदन में इनका पूरा एक्टिंग चेंज कर दिया. एंड बाई गेटिंग हर अ सीरियस रोल विद मनोज कुमार, फिर चिराग फिल्म 1969, एंड देन मैं तुलसी तेरे आंगन की राज खोसला की फिल्म, शक्ति सामंता ने पगला कहीं का, एंड कटी पतंग जहाँ पे अवार्ड मिला ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस, एंड देन उधार का सिंदूर, वहाँ पे नॉमिनेशन मिला था बेस्ट सपोर्ट का, 1976 की फिल्म, वो थी शक्ति सामंत. विजय आनंद ने बहुत फिल्में दी, मोहन सेगल ने बहुत फिल्में दी, शी डिड गुजराती फिल्म एज वेल. तो आशा पारेख को मैं इतना ही कहूँगा, नजर ना जा मछल का वी ने चाल्या क्या तमे, दैट्स राइट. गुजराती फिल्में जो की थी, दैट वॉज ज्योति, पलश के फूल, देन बाजे पायल. टीवी सीरियल्स इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, आकृति, जहाँ पे शी बिकेम द डायरेक्टर ऑफ गुजू सीरियल ज्योति, प्रोडक्शन पलश के फूल, प्रोड्यूसर ऑफ बाजे पायल, प्रोड्यूसर ऑफ कोरा कागज, एंड देन अखंड सौभाग्यवती, उसमें इन्होंने एक्टिंग जो की थी. पंजाबी फिल्म कंकन दे ओले, धर्मेंद्र के साथ और दारा सिंह के साथ लंबरदानी, एंड शी केप्ट ऑन डूइंग इट. लेकिन इस आदमी ने उनको छोड़ा नहीं. बाद में भी एक फिल्म जो बनाई देवानंद के साथ, वहाँ भी तोलाराम जलान ने काफ़ी मतलब बैड बिहेवियर किया था. वो बात कभी और सही. लेट्स विश आशा पारेख हैप्पी 84th बर्थडे.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: Sunshine, skyscrapers and souks.
4: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected. Protected.
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
5: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
6: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
5: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
6: Exclusive radio partner, Lyco Radio Network.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Start to

0: इस फिल्म के अंदर, कारवां फिल्म में, इस गाने के अंदर थोड़ा कॉमिकल एक सटायर था। और आशा पारेख ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि इसको मैं तो क्लासिकल डांसर और वेस्टर्न में स्पेशलाइज करती थी, लेकिन स्टेप से बाहर गलत डांस करना इनको कहा गया था, एंड शी फाउंड इट सो डिफिकल्ट टू डू दैट। आप देखना फिल्म में कैसे वो गलत डांसिंग कर रही है, लेकिन दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर बिकॉज शी वॉज एन एक्सपर्ट।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: This is a real treat for you. Sunil Dutt, आशा पारेख, तलत महमूद एंड लता मंगेशकर, फिल्म छाया, ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROAMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
8: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
11: Budget tight, par brand ka impact bada chahiye. Leica Radio aur Leica Gold laaye hain aapke liye perfect package. Radio, digital ya event, sab kuch milega customized. Jaldi kariye. Call now. 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com।
12: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.
13: गुस्सा की माफ लेकिन कहना जरूरी है, फिल्म है समाधि एंड This song is very close to my heart and this is Bangle Ke Piche, Lata Mangeshkar. Next song is from film Bin Badal Barsaat. 6.5 saal pehle ye Leica Gold pe sunai diya tha. Gana, next song.

0: एक फिल्म बनी थी ब्लैक बनी के ऊपर और इतनी खूबसूरत फिल्म थी कहीं और चल 1968 की फिल्म। क्या हुआ था कि ज्वेल थीफ जब सक्सेस गई तो इस सक्सेस के ऊपर देवानंद विजयानंद दे गॉट टुगेदर विद द कैमरामैन जाल मिस्त्री एंड दैट वाज हिज डेब्यू वेंचर ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फिल्म। और तोलाराम जलान ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पूरे राइट्स ऑफ द फिल्म, और बोला कि मैं पैसे दूंगा। फिर बाद में शूटिंग शुरू हो गई, ना तो आशा पारेख को कोई पैसा मिला, ना तो किसी को भी पैसा मिला, इसने पैसा देना बंद कर दिया, सब लोग स्टार हो गए, कैश स्टार्व्ड फिल्म, एंड जाल मिस्त्री फंस गए बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर। और फिल्म इन्होंने बंद करवा दी तोलाराम जलान ने, जस्ट टू गेट आशा पारेख आउट ऑफ द फिल्म। एंड देन 90% फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी थी, तो भी इन्होंने सारा कुछ बंद करके, ही वॉन्टेड द फिल्म टू फ्लॉप सो दैट ही कैन क्लेम टैक्सेस एंड ऑल दैट बिजनेस। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ एग्रीवेशन जब हुई तब कोई डुप्लीकेट स्टार्स को ले आए एंड ही डब्ड एंड सारे डबिंग आर्टिस्ट को चेंज कर दिया और पूरी फिल्म वापस इन्होंने रिलीज कर दी। एंड ऑब्वियसली इट वॉज अ ह्यूज बिग फ्लॉप बट म्यूजिकली क्वाइट गुड। लेकिन ये भी एक पैतरा था उनका अगेंस्ट आशा पारेख।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड नॉन स्टॉप क्लासिक्स।
0: बिन बादल बरसात। साढ़े छह साल पहले इस रेडियो स्टेशन पे गाना सुनाई दिया था।

0: What a song, what a song. Yes, and we are continuing with the journey of Lata Mangeshkar and 90 heroines ke liye inhone gaya tha. Main sara week maine aapko Lata ji ke gaane sunaye hain for heroines that she has sung for, and that's 90 heroines. We came to the letter M, and aaj pehla gaana jo tha Meenakshi Seshadri. उनकी फिल्में तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, हीरो फिल्म जो है, फिर ये गाना जो आपने सुना फिल्म शहंशाह का, एंड देन एक मेरा बड़ा प्यारा गीत मुझे सुनाना था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, वो है मेरी जंग फिल्म का. उसमें जब वो दो वर्जन्स है, एक जब वो छोटी थी तब का वर्जन जिसमें नितिन मुकेश ने गाया लता मंगेशकर जी के साथ, और फिर बड़ी हो जाती है, एंड देन इट्स संग बाय अनदर सिंगर. एक्चुअली आई थिंक इट वाज शब्बीर कुमार हु सैंग द अदर वर्जन ऑफ इट, लेकिन हमारे पास वो शब्बीर कुमार वाला वर्जन नहीं था और नितिन मुकेश वाला वर्जन था. दैट मीन्स इट वॉजन्ट मीनाक्षी सेशाद्री ऑन द स्क्रीन विद नितिन मुकेश का वर्जन. So I could not take that particular song, and then there was another Sajan Mera Us Paar Hai, etc., etc. But I chose this particular song, and the second one, Khurshid Jahan, that's the name of that actress, a Pakistani actress who got the name Meena Shori, and Meena Shori was Pakistani film actress who worked first in Indian cinema and then later Pakistani cinema, and she happened in she appeared in Hindi and Punjabi films. Usme se ye jo film thi Ek Thi Ladki, usme Lara Lappa jo gana aaya uska nickname ban gaya tha the Lara Lappa girl. She was so beautiful with some lovely eyes and a beautiful face, and when she went back to Pakistan, in India she had Sikandar, फिर काफ़ी अच्छी फिल्में उन्होंने की थी, एंड पाकिस्तान जब गई तो शी डिड मिस 56 एंड देन अनदर प्लेजराइज्ड वर्जन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस 55 और ये सब, एंड शी बिकेम नोन एज द लक्स लेडी ऑफ पाकिस्तान, एंड हर फोर मोस्ट फेमस फिल्म वॉज सरफरोश इन 1956 विच हैड अ स्पेशल कैरेक्टर रोल इन देयर, एंड दैट वॉज the actress who was born in Rawalpindi, and she passed away on 3rd September 1989 at the age of 67 in Lahore. So Lata Mangeshkar sang for her too. So it's one of the 90 names of heroines that Lata Mangeshkar has sung for. And next, after Meena Shori, we will have Minu Mumtaz. Minu Mumtaz, sister of Mahmood, and then comes Mumtaz to end today's M version. And Monday se hum shuruaat karenge N se, letter N. I hope you enjoyed this week, because today it was Asha Parekh. I could not help but do a 2-hour tribute. And when I was talking about that film, Kaun Si Thi Kahin Aur Chal, एक्चुअली क्या थी वो फिल्म, इन्होंने वो जलान जो थे उन्होंने पैसा बंद कर दिया देना, फिल्म को रुकवा दिया सब कुछ, एंड देन बाद में जल्दबाजी में एक दिन का एक शो उसने रख कर फिल्म उतार दी, एंड द फिल्म डज नॉट हैव एनी डीवीडीज, वो फिल्म कहीं भी नज़र नहीं आती कहीं और चल. बट इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म विद ग्रेट नेम्स लाइक विजय आनंद डायरेक्टेड इट, written by Vijay Anand, produced by Jal Mistry. That was his first film that he produced, Jal Mistry did, and it was Devanand, Asha Parekh, Shankar Jaikishan ka music. Aaj bhi aap music sunenge to aapko itna pasand aayega. Honestly, one of these days I'm gonna play the music of that film to you, and you will realize ke kitni successful film ho sakti thi ye. Lekin Mr. Jalan, who had this problem with Asha Parekh right from the beginning, because he was in love with Amita, and sari filmon mein maine story jo batai thi. Anyway, so let's carry on with the journey. SBI
1: SBR UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर travel mantra?
5: Sunshine, skyscrapers and souks
6: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
6: Southall Travel. At all protected.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: क्या लिरिक्स है, फिल्म है आखिरी खत। लिरिक्स ऑफ कोर्स कैफी आजमी, म्यूजिक बाय खयाम, अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक कैफी आजमी। आई होप यू एंजॉयड द सॉन्ग्स आई चोज फॉर यू दिस वीक। एंड हियर आई गॉट टू लेट यू नो व्हाट्स गोना बी हैपनिंग इन टाउन। You already know, 1st of November, the legend Kavita Krishnamurthy performs live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office, exclusive radio partner Leica Radio Network. And Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at leicaradio.com.
1: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Listen to that. The kids are finally in bed. Ah, time to sit back, relax, and crack open the HMRC app. 'Cause now I've got 5 minutes peace, I can sort out child benefit and get round to updating things like our new address. It's handy for claiming tax refunds too. For your money and tax, download the HMRC app. You're on it.
5: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
6: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
5: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रोहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
6: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
5: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756147।
6: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016।
5: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192322-7274। बुक योर टेबल टुडे।
9: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties.
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: The song, the film, everything is a typical example of a beautiful combination of Hindu-Muslim. That is N. Datta ka Sangeet, Jaan Nisar Akhtar ki lyrics. And Minu Mumtaz acting. Lata Mangeshkar ji ga rahi hai. And of course, isme Rafi saab bhi the. Black Cat.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: कैसा लगा ना? वो एक जमाना था जब कोई किसी का मजहब नहीं देखता था. They used to look at art. You know, काश वो जमाना वापस आए.
1: Like a Goon, London का number one Asian retro music station.
0: फिल्म है खिलौना, एक्ट्रेस मुमताज, गाया किसने? लता मंगेशकर जी ने. यहां भी कोई मजहब का प्रॉब्लम नहीं था.

0: Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
2: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
3: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
2: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
3: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
2: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
5: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
6: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए। सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
13: Bali Brumbat on Gold Afternoons.
14: Like a gold.
15: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Bali Brumbat on Gold Afternoons. Like a
2: gold. Wow, wow, what a journey it's been, yeah?
3: Bali Brumbat.
2: यस आशा पारेख फॉर टू आवर्स. अगर मैं चाहता तो आशा पारेख के बारे में आई थिंक आई कुड गो ऑन फॉर अनदर 20 मिनट्स आई गेस, बट देयर वाज सो मच टू से अबाउट आशा जी, बिकॉज यू नो द टाइप ऑफ लाइफ शी हैड सिंस शी वाज अ लिटिल किड. एंड देन I was talking to some of my friends and I said I could talk about her life for another 20 minutes. Her classical dancing teachers, I know all the names of all the teachers. Her friendship with Wahida Rahman and Helen. Her donation for a hospital, which is BCJ Research Center, which keeps opening and shutting. Her dance school, Kara Bhavan. And her book, The Hit Girl, जिसमें उन्होंने कन्फेस किया है अबाउट हर लव फॉर द वन एंड ओनली लव ऑफ हर लाइफ नासिर हुसैन, हु वाज ऑलरेडी मैरिड विद किड्स, सो शी डिड नॉट मैरी हिम बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू ब्रेक हिज फैमिली एंड शी रिमेन्ड अनमैरिड राइट अप टू नाउ. एंड ऑल द हिट फिल्म्स दैट शी डिड, आई कुड गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस ब्यूटिफुल स्टोरी.
3: ये है Like a Gold.
4: This is Like a Gold across Greater London.
2: And it's Sandy Shah. Drive time here. And Annika on Leica Radio Midlands. Bali Brahmat ka namaskar. Have a wonderful weekend. Monday shuru karenge Lata Mangeshkar alphabetically with the letter N.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड
1: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823 Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
3: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
4: जब सामने तुम आ जाते हो क्या जानिए क्या
5: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
6: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: उषा तिमथी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ फिल्म हिमालय की गोद में, व्हाट अ लवली लवली सॉन्ग, आई थिंक इट्स एनीवन रफी साहब हैज संग इन दैट. थैंक यू फॉर ऑल योर लवली मैसेज, आई विल रिवील वेरी शॉर्टली टू यू our jute bola. I was just reading this, one of these facts, and today apparently October the 2nd celebrates World Farm Animals Day and Name Your Car Day. Has your car got a name? Does your car have a name? My car doesn't have a name, but I'll give you a clue. My registration, if you know me, you'll know my registration.
1: This is Sandy Shah on Gold Drive. Nafar

0: Gold Drive with Sandy Shah. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: विजिट TravelHubWorld.com.
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
3: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा.
4: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम.
3: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
4: रात 8 बजे से देर रात तक. टिकट सिर्फ £5 per person per night. 5 साल से छोटे बच्चे फ्री.
3: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए. टिकट और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
4: 07956458872.
3: तो मिलते हैं गरबा में.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 hour line.
6: You have one new voice message. New message.
7: Hi Jess, it's Kate, your midwife. I just wanted to follow up on booking your flu vaccine. Flu's always pretty awful, but can be even worse when you're pregnant. Please give me a call back.
8: Flu can put both you and your baby at increased risk of severe complications, including early labour and low birth weight. But the vaccine gives you both the best protection from flu. Speak to your midwife, GP practice or pharmacist. Stay strong. Get vaccinated.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. London, Midlands, Manchester. This is the Like a Radio Network.
9: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Like a Gold.
2: और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं सभी को राजा और सभी को रानी बना दूं, क्योंकि आप सबके ख्याल में, ज्यादातर लोगों के ख्याल में, आज गीतों में राजा रानी कॉमन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है.
0: Feel Good Classics with Anisa Nasir.
2: अंजुम जी, मिसेस चियांग, उमर जी दुबई से, पम्मी जी, फरजाना जी, ताहिर जी, दर्शना जी, लुबना जी लाहौर से, मंजीत संगर जी, पॉल जी, सोहबत खान जी, मकबूल साहब, विजय जी, मोहम्मद अयूब चौहान जी, चौधरी फरीद अहमद जी, अजिंकिया जी, ना बात नहीं बनी.

0: सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Give your home its autumn glow up with Dunelm. Cushions and throws that make your sofa impossible to resist. Done. Cozy curtains that keep the heat in when it's colder out. Done. Table set for dining in without forking out. Done. Your perfect bedding for a longer, deeper sleep. Beautifully done. This autumn, make your home feel a little more you with Dunelm, the home of homes.
2: This is Anisa Nasir with The Big Show.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: मेरे मन की
7: Catch Raj Kapoor's evergreen classic Sangam, restored in 4K as part of the South Asian Film Festival this Sunday, the 4th of October from 2 PM at your nearest Showcase Cinema. Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFF UK.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: LYCA This is Laika।

0: है लाइका गोल्ड. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapko dila sakta 127.2 Indian rupees, 85.3 Afghan Afghani, 366.5 Pakistani rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is currently trading at £100.61 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: और ये गीत जो अभी अभी आपने सुना वो हम आप सबके साथ साथ अपनी बहुत प्यारी सी मुजम्मल जी के भी नाम करेंगे. कहती व्हाट अ सॉन्ग जीवन जोगिए जियो मेरी शहजादी. आप हैं जी हमारी शहजादी, आप हैं हमारी रानी. बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच. आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस बहुत स्वीट, बहुत मुख्तसर मुझ तक जब भी पहुँचते हैं मुजम्मल जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो वेरी मच पूरन कपूर जी. लो जी लगा दी आपकी हाजिरी हमने पूरे वीक की और गजल स्टेशन बहुत जल्द आ रहा है, वेरी सून. अब घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, हम उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द. लीजिए भी हार्ड वर्क, उन लोगों ने भी बहुत किया जिन्होंने हमें सही जवाब भिजवाए हमारे आज की थीम को लेकर. लेकिन पहले थोड़े से गलत नाम और ऐड कर लें. गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, वंदना जी, वीना जी, आपके जवाब बात सही नहीं है. भारती जी, हमारी दीदी अडवाणी जी, यू आर द रानी ऑफ द आवर. मैंने कहा था ना कि इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि भारती जी बहुत कम हिस्सा लेती और बहुत कम सही भी होता है उनका जवाब. आज तो आपने कमाल कर दिया. तो भारती जी के बाद संध्या भावसर जी, ओम प्रकाश लाल जी, कीर्ति जी, रानी जी, रेनू जी, सलमा जी, तोची जी, अमित पटेल जी, अली जी, नायला जी, तारिक राहिल जी, उल्लास जी टोरंटो से, इरफान जी, जागृति जी, आफ्ताब गिल जी, जैस जी और नवीन चंपा निर्या जी. आपने मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज भिजवाया है और बिल्कुल सही जवाब है आपका. आपका स्वागत है हमारे शो में. कुलबीर सिंह जी, आपका भी जवाब सही है.
0: Biggest Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.
1: और एक और हमारे अमित जी कहते हैं थीम का तो पता नहीं, शो की रानी तो आप हैं. हाय हाय मर जा गुड़ खा के.

0: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
4: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
1: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
5: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
6: सद समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
7: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
6: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
7: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
6: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
7: 07956458872
6: तो मिलते हैं गरबा में
8: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
0: अनीसा नासिर विद द बिग शो वीकनाइट्स फ्रॉम 7 p.m.

लिए गम करने की जरूरत नहीं है, अगर जवाब गलत है तो क्या हुआ, अभी ताजा है बहुत घाव बिछड़ जाने का, घेर लेती है तेरी याद सरे शाम अभी, एक नजर और इधर देख मसीहा मेरे, तेरे बीमार को आया नहीं आराम अभी। और सही जवाब भिजवाने वालों में शामिल हो गई सईदा जी, फातिमा जी, दिनेश पोपट जी, अरुणा शाह जी, दिलीप सरोज जी, नीलेश जी, गीता हर्षद जोशी जी और किरित जी। मुझसे पूछे नीलेश जी बहुत मछलियां फंसी होंगी। जी जी मछले भी फंसे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कॉमन रहा? एक कॉमन रहा, वर्ड एक हर गीत में था। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। मैं एक राजा हूँ, एक था राजा, एक लड़की को देखा, एक तू है पिया। समझ तो आई गई होगी अब तक। गुड इवनिंग।

0: तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना टोलना। तुम्हारी याद की खुशबू कमाल करती है, तुम्हारी याद की खुशबू कमाल करती है। खुलूस दिल से मेरी देख भाल करती है, मुझे ये जोड़ के रखती है हिजर में तुझसे। ये जिंदगी मेरा कितना ख्याल करती है, अकेली घूमने निकलूं तो रास्ते की हवा तुम्हारे बारे में मुझसे सवाल करती है। तवक्कुआत मुझे तोड़ फोड़ देती हैं, उम्मीद मुझको हमेशा निढाल करती है। अगर ये सच है मोहब्बत है जिंदगी, तो फिर ये क्यों, ये किस तरह, ये किस लिए मेरा जीना हराम करती है।
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जरूर भिजवाइए, लेकिन पहले जान लीजिए कि £1 in British sterling today can get you up to 126.5 Indian rupees. तो भूलिएगा नहीं exchange in branch online और SBI Yono mobile app के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भी एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब आते भिजवाए, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब आते भी भिजवाए, एंड इट वाज वेरी मिसलीडिंग। आई हैव टू टेक द ब्लेम फॉर दैट। एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि हमारे जनाब चौधरी फरीद अहमद साहब कह रहे हैं, आज बहुत दिनों के बाद आपने जहनी कसरत जो है वो करवाई है, यानी कि हमारे दिमाग को आपने हिला के रख दिया। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप बहुत लेजी होते जा रहे थे, सब बस जी आसान वर्ड है ये कह देंगे, बता देगी नहीं सा, हाँ ठीक है आप राजा हो आप रानी हो। लेकिन आज तो क्या कहते हैं, बड़ा प्यारा सा शेर एकदम जहन में आया, क्या था, गालिब तुम्हारे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। लीजिए उल्टे सीधे की तरफ चलते हैं, और आपको ये चंद अल्फाज में बता रही हूँ, इनकी रोशनी में आपने बूझना है कि मैं कौन से गीत की बात कर रही हूँ। किरणों को देखा, तारों को देखा, किसी बहाने तूने, किरणों को देखा, तारों को देखा, किसी बहाने तूने।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: If your business is accused of damaging a client's property, for example, accidentally pouring tea all over their expensive audio equipment, really, really sorry about that, by the way, then Hiscox could help protect you. The story of your business, underwritten by Hiscox Business Insurance, subject to already holding a relevant Hiscox policy and subject to policy eligibility, terms and conditions.
1: Anisa Nasir, live across Greater London with The Big Show.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं, तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर Travel Mantra.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: Add देसी तड़का to your routine with जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Milna tha ittefaq aur bichhadna naseeb tha. Milna tha ittefaq, bichhadna naseeb tha. Wo utni dur ho gaya jitna qareeb tha. मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था. मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था. लीजिए भाई, हमें हमारे इस घंटे के भी राजा रानी कह लें, राजा भी और रानी भी दोनों मिल चुके हैं. वैसे तो उसूलन मतलब जो पहले जवाब देता है, भले वो राजा हो यानी कि मेल हो या फीमेल हो, एक ही होता है. लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा हो कि पहले एक मेल या पहले फीमेल और बाद में मेल का जवाब आए, तो दोनों को राजा रानी बनाने में कोई हर्ज नहीं है. लिहाजा अली जी, आज सबने मुझे हैरान करने का ठेका ले रखा है. अली जी, अटलांटा से इस वक्त ड्राइव करते हुए यूं ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ये तो नहीं गा रहे थे? ऐसे करते हुए घर जा रहे होंगे और साथ निभा रहे हैं हमारा. ऑनेस्टली आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ माई लिसनर्स. जब जब मौका मिलता है, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, ना सिर्फ सुनते बल्कि अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं कि हाँ भाई हम सुन रहे हैं, बाद में हमें खरी खोटी मत सुनाना. तो भाई आप हैं राजा ऑफ द आवर, अली जी ऑल द वे फ्रॉम अटलांटा, और रानी जी स्लाव से आप हैं रानी ऑफ द आवर. वैसे आप तो वैसे ही रानी हैं, आपका तो नाम ही रानी है. गीता हर्ष जोशी जी, कुलबीर सिंह जी, कमल शिवनानी जी, मीनाक्षी जी, निम्मी जी बड़ी खुश हो रही हैं कि मैंने बूझ लिया, होना भी चाहिए. प्रतिभा जी, उल्लास जी, अयूब चौहान जी, सईदा जी, सलमा जी, विजय गुडोरी जी और करसन पिंडोरिया जी, भले भले हो गई, अभी सबके जवाब सही है.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Travel to Dubai without a heavy price tag. Southall Travel's affordable Dubai offers combines exclusive deals at selected partner hotels with direct flights with Emirates from just $629 per person for 3 nights. Travel by 10th December. Ye shart hai bhai. Agar 10 December se pehle pehle aap jaate hain, tab aapko ye price मिलेगी. कॉल कीजिएगा ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए साउथहॉल ट्रेवल को ऑन 0208-843-4444 या विजिट कीजिए southalltravel.co.uk.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Anisa Nasir on Leica Gold Greater London.
2: अनीसा ख्याल कर, कल सैटरडे है तो आज थोड़े से रोमांटिक गीत भी होने चाहिए. रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और तुम कर रही हो हम तुमसे जुदा होके.

0: गांव में सिर्फ दो प्रेमी हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर देखिए, यहाँ पर तो सिवाय प्रेमियों के कोई और रहता ही नहीं है और इजाजत भी नहीं है, सिर्फ प्रेमी ही आ सकते हैं, ऐसे गाने सुन सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स में अपने नाम मेंशन करवा सकते हैं, क्योंकि वो दिल वाले हैं, प्यार वाले, प्रेम वाले। और ये इसी तरह बना रहे, ऐसी हमारी दिली दुआ है। लीजिए भाई, हमारे उल्टे पुल्टे को लेकर दिनेश पोपट जी ने भी सही जवाब भिजवाया है। नीलेश जी, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, थैंक यू सो वेरी मच। और मुसम्मल जी किसी गीत के बारे में पूछ रही हैं कि कल मैंने फरमाइश की थी, आज वैसे फरमाइशी दिन नहीं है, लेकिन अगर मैंने नालायक ने कल आपका गीत नहीं सुनवाया, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। मुसम्मल जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
1: ये है Like a Gold।
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Like a Gold रेडियो, Like a रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Like a रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: Like a एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स।
0: हाँ जी, बिल्कुल, अपडेट देने के लिए मैं तैयार हूँ। और इस दफ़ा के टॉपिक जो हैं उसके बारे में बता दूँ, इनसाइट इनटू फॉस्टर केयर, जिसे होस्ट किया है रूबी ड्राजा जी ने, फ्रॉम फॉस्टरिंग वर्सेस अडॉप्शन एंड द अप्रूवल प्रोसेस टू फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द सपोर्ट अवेलेबल टू केयरर्स। दिस एपिसोड गेट्स इनटू द क्वेश्चंस पीपल ऑफ्टन हैव, बट क्या होता है कि पूछ नहीं सकते हैं किसी को, कहीं से जवाब नहीं मिलता है, तो उसके लिए परफेक्ट है ये एपिसोड आपका देखना, तो जरूर देखिएगा। व्हेन शी विल बी डायरेक्टली टॉकिंग टू द फॉस्टर केयर प्रोफेशनल्स। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
5: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
4: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
5: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में। यूके में पहली बार
4: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन,
5: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा।
4: शाम 7 बजे डोर्स ओपन।
5: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 0208-426-0678।
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Like Extra podcast, Ruby Raza discusses foster care among South Asians.
8: If I was speaking to foster carers, I would say that you don't need to be perfect. You need to be present. You need to have the empathy to start and do the caring of foster carers are regarded as professionals. If you think you can, you can.
9: Yeah, true.
8: Just try it.
9: There's a will, there's a way.
1: Like Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: क्या बात है. और सैंडी ऐसे ही गलत नहीं कहते हैं कि मैं एक क्या कहना चाहिए साइलेंट एडमायरर्स एंड साइलेंट लिसनर हूँ उनके विंटेज गोल्ड की. और ये भी उनका कहना बजा है कि कहती है कि मैं तो नहीं जानती ज़्यादा इन गीतों के बारे में. मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने सुने नहीं है. मैं ये कहती हूँ कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है. तो इसको आप ज़रा करेक्ट कर लीजिए और ये प्यारा सा गीत मैं उन्हीं के नाम करूँगी. देख लीजिए उनके जो फैंस हैं ना, उनके जो लिसनर्स हैं, वो भी कह रहे हैं आ ही गई आप भी विंटेज पर. मैं क्या करूँ, ये इस दोस्त की मोहब्बत में आई हूँ और कोई बात नहीं है. आई होप इफ इज लिसनिंग ही वोंट से तू ही कर ले आके विंटेज.
1: ये है लाइका गोल्ड. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Jam jam pe jo ji pehle rate check kar lo ki aaj 1 British pound aapko dila sakta 366.8 Pakistani rupees, 85.5 of Ghana Afghani and 127.3 Indian rupees, 162.8 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £100.65 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: उमर जी आपको ज्यादा नोटी नहीं होते जा रहे हाँ? कह रही है ये शो कौन कर रहा है, सैंडी कर रहे है या निशा कर रही है? अब मैं क्या कहूँ, अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त, प्यारे दोस्त एक दूसरे का आईना होते हैं ना, तो ऐसा ही समझ लें कि सैंडी कर रहा है.
1: This is like a gold. Gold. Reminisce those classics.
3: पंजाबी तड़का विद अनीसा.

0: हाय रब्बा, नहीं हो लगता दिल मेरा,
1: नहीं हो लगता दिल मेरा।
0: और दिल ना लगने का इससे ज़्यादा खूबसूरत बयान कोई कर ही नहीं सकता, जिस तरह से रेशमा जी ने किया। एक सज्जन हुंदा सी फागुन चीत बहार वर्गा, अंब ते सेब अनार वर्गा, साहब ते सरकारां वर्गा, हफ्ते ते इतवारां वर्गा एक सज्जन हुंदा सी, मिठियां मिठियां बातां वर्गा, चीत विसाखू रातां वर्गा, प्यार दियां सुगातां वर्गा, ईदां ते शबरातां वर्गा एक सज्जन हुंदा सी, फागुन चीत बहारां वर्गा, अंब ते सेब अनारां वर्गा, साहब ते सरकारां वर्गा, हफ्ते ते इतवारां वर्गा। बेहद शुक्रिया गीत की पसंदीदगी के लिए। और विजय जी कह रहे हैं सैंडी ने आज बहुत अच्छा नूरजहां जी का गीत जो है वो प्ले किया था, पता है जी, और मुझसे शाबाश लेने के लिए उसी वक्त मुझे बुलाया था कि देखो मैंने क्या सुनवाया। और मैंने कहा सैंडी जी आप तो सैंडी झा जी ही हो ना, तो आप ही से ऐसे कामों की मुझे उम्मीद है और आप उन उम्मीदों पर पूरे उतर रहे हो। ऐसे बहुत सारे गीत शामिल करने की वो भी कोशिश करते हैं, हमारे सभी साथी कोशिश करते हैं ऐसे गीत सुनवाए जाएं जो आपके पसंद के मेयार पर खरे उतरे। दिनेश पोपट जी जवाब सही है, आगे बढ़े।
2: This is a Nissan Nasse with the big show.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Sunshine, skyscrapers and souks.
5: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: कैरेटिनो बेटर घी, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Like our radio और Like our gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@likearadio.com.
2: Nasir with the big show. Weeknights from 7 p.m.

0: पर हमने तो भाई दिलीप सरोज को मनाना नहीं, क्योंकि उनका नाम लेना भूल गई। और क्या प्यारे अंदाज में मुझे याद दिला रहे हैं। दीदी आप मेरा नाम नहीं बोले हो तो अब बोल देते हैं। देर से ही सही नाम तो ले रही हो ना, पता नहीं कैसे भूल चुक हो जाती है कभी ना कभी दिलीप भैया। सो मैं बता दूं आप सभी को कि उल्टे पुल्टे को लेकर हमारे दिलीप सरोज जी का भी जवाब एकदम बरोबर था।
1: Lisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 126.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online, ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भी शुक्रिया अदा करना है जनाब जहीर खान साहब का, इतनी रात देर गए तक पाकिस्तान में कराची में जाकर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। ना सिर्फ खुद सुन रहे हैं बल्कि बकरियां भी सोती हैं तो उनको भी यूं करके हल्के से हिलाते हैं कि अरे अभी नीसा इधर ही है, थोड़ी देर और जाग लो। वैसे आपने बड़ी मज़े की बात लिखी, कहते हैं आज जो है मेरी बकरियों का फेवरेट ग्रास नहीं मिला। अच्छा मैं तो समझती थी कि सिर्फ इंसानों का ही फेवरेट फूड होता है। अच्छा जानवरों का भी होता है, आखिर जानवर भी तो इंसान होते हैं ना यार। तो आप उनको कल अच्छा सा प्लीज़ उनका फेवरेट फूड ज़रूर खिलाइएगा क्योंकि इस वीकेंड। और यहाँ हम मिलजुल कर बिरयानी बनाते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: If your client is not happy with the quality of your work and wants compensation because they allege it's amateurish, unprofessional and childlike, his trucks could help protect you. The story of your business, underwritten by his Cox Business Insurance. Subject to already holding a relevant Hiscox policy and subject policy eligibility, terms and conditions.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. Like a
3: god. Two businesses.
4: Same town.
3: Same service.
4: One appears on page one of Google.
3: The other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: तेरा क्या होगा रे कालिया?
6: सरदार मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
5: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
7: जब पूनम की स्वीट्स मंगवा ली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
8: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 02085744934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
9: सेलिब्रेट दिवाली एट द आइकॉनिक रॉयल Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
13: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place. 11,
13: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
15: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube. 11.
16: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कैफी आजमी जी का एक और तड़कता फड़कता हुआ गीत, यार अब गमे हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्ते दुआ होता। एक इश्क का गम आफत और उस पे ये दिल आफत, या गम ना दिया होता या दिल ना दिया होता। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाएं। और गीत जो है वो ख़ास तौर पर मैं इसलिए ये सुनवाने जा रही हूँ क्योंकि दोस्तों आज जो है पाकिस्तान सिल्वर स्क्रीन पे राज करने वाले चॉकलेटी हीरो जनाब वहीद मुराद जी की आज बर्थ एनिवर्सरी है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उन पर पिक्चराइज कम से कम एक दो गीत तो प्रोग्राम में जरूर शामिल करूं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: One and only Pakistan ke chocolatey hero Waheed Murad ji par picturized ye geet humne aapko sunwaya. Aaj unka 88th yome paidaish hai, yani unki birth anniversary hai. 2 October 1938 mein वो पैदा हुए थे सियालकोट में. अपनी बहुत ही दिलकश शख्सियत, मुनफरिद अंदाज अदाकारी और उनकी आवाज़, अगर आप नहीं जानते उनके बारे में तो प्लीज़ गूगलाइएगा. और फिर बैलेंस, मतलब कंपैरिजन जो मैं कर रही हूँ, मतलब कंपैरिजन तो नहीं, जो मैं उनके बारे में बता रही हूँ, अगर उसमें ज़रा सा भी मतलब गलत हो तो आप मतलब मुझे सज़ा दे सकते हैं. पाकिस्तानी सिनेमा के मकबूल तरीन हीरोज़ में उनका शुमार हुआ. हीरा और पत्थर में मरकजी किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया. और फिल्म अरमान का जिक्र, ओए होए होए, उस फिल्म में तो उनको स्टार बना दिया. क करीना, अकेले ना जाना, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, ए अब्रे करमा, जितना बरस इतना बरस कि वो जा ना सके, घर आया है एक मेहमान हसीन. वाह, कितने मकबूल गीत हैं जो उन पर पिक्चराइज हुए और उन्होंने उन गीतों में जान डाली अपनी अदाकारी से. वो उनकी पहचान का हिस्सा हैं. अरमान, अंधेरा उजाला, अंदलीब, ले लीजिए दोराहा, अंजुमन, बारो, फूल बरसाओ, हीरा और पत्थर, सुपर डुपर फिट फिल्में उनके. वहीद मुराद साहब 23 नवंबर 1983 में कराची में इंतकाल कर रहे थे. तो भी मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि इन प्यारी प्यारी लेजेंड्स को हमेशा याद रखिएगा, कभी दिल से ना भुलाइए.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
2: और लीजिए एक और फनकार का भी जिक्र करना चाहूँगी. वो हैं स्टेज, टीवी, फिल्म के बेताज तो नहीं कहूँगी, उनको तो ताज हम सब ने पहनाया अपनी मोहब्बत का और खुलूस का, एहतराम का. कॉमेडी के किंग, बादशाह उमर शरीफ जी, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है. अगर आप सिर्फ बकरा किस्तों पर ही कहेंगे ना तो लोग पहचान जाएंगे कि मैं किन का जिक्र कर रही हूँ. उनकी भी मगफरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा. और लीजिए दोस्तों, अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाना है और आपको बताना है बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनके बारे में, ताकि आप भी, लाइफ इज़ टू शॉर्ट यार, जस्ट इन्जॉय योरसेल्फ. और जब भी मौका मिले, ज़िंदगी मोहलत दे, तो जाकर जो है इन इवेंट्स को इन्जॉय कीजिए. जैसे सुनील ग्रोवर जी आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं कितना हंसते हैं, उनके मतलब किरदार के कितने रूप हमारे सामने आते हैं. What a versatile comedy कह लें, एक्टर कह लें, जो भी कह लें, तो जीनियस हैं सुनील ग्रोवर जी. लाइव इन लंडन एट ओवो अरीना वेम्बली में ऑन थर्सडे 29 अक्टूबर, और लेस्टर में एट मेटियोली अरीना ऑन सैटरडे 31 अक्टूबर. टिकट्स आर ऑन AXS, इवेंट ब्राइट और टिकट मास्टर वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो बंदोबस्त फरमा लीजिए. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो Network.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
2: मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे. गुड इवनिंग, आपका अपना लाइका गोल्ड.

0: शऊरे गम है मगर शिकवाए सितम तो नहीं, शऊरे गम है मगर शिकवाए सितम तो नहीं, वो और होगा कोई बेकरार हम तो नहीं। जुदा हुआ है तू फिर जान की अमान ना दे, जुदा हुआ है तो फिर जान की अमान ना दे, तेरे बगैर जिए हम, तेरे बगैर जिए हम में इतना दम तो नहीं। जनाब वहीद मुराद साहब हों, उमर शरीफ जी हों, या इनके जैसा ही कोई और आर्टिस्ट, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गए। हम आपको हमेशा याद रखेंगे।
1: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट TravelHubWorld.com।
3: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
4: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
3: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
4: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
3: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756194।
4: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियो रामा 0208-907-0116।
3: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

दिल से कह दी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फें नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। झील सी कह दी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फें नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, रहती है वो दूर।

मुझसे शर्म, मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी।

0: Another song picturized on Chocolatey Hero, Janab Waheed Murad Sahab. आपको गीत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो वेरी मच उस्मान जी, तनवीर जी, चौधरी फरीद अहमद जी, तारिक राहिल जी. मुझे पता है आप लोग बहुत कदरदान हैं ऐसे गीतों के, ऐसे फ़नकारों के, और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करने की गीतों के ज़रिए, इन फ़नकारों की बातों के ज़रिए. और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी पसंद के मैार पर खरा उतरे, उसे मैं प्रोग्राम में शामिल करने से एक पल के लिए भी नहीं चूकती. और इसी बहाने एक बहुत प्यारा दोस्त अक्सर याद करने लगा है, टिटू जी, सो लवली टू हैव योर मैसेज. ऑनेस्टली दिल खुश हो जाता है. और दोस्तों, ये मेरा दोस्त जो है, ये आम दोस्त नहीं है, ये ख़ुद भी एक आर्टिस्ट है, एक बहुत प्यारे आर्टिस्ट घराने से ताल्लुक है. आवाज़ कभी आप इनकी सुन लेना तो बस आप कहें कि वाई इज़ ही नॉट ऑन द रेडियो. बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है टीटू जी, बहुत ही प्यारे दोस्त. Thank you so, so, so very much. You made my day.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 127.4 Indian rupees, 85.7 Afghani, 366.6 Pakistani rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £100.52 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: लीजिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. वीकेंड सामने है, वीकेंड का भरपूर लुत्फ उठाइएगा. और हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक प्रेजेंटर मौजूद रहता है वीकेंड पर आपका साथ निभाने को. उनका साथ निभाइएगा, बशर्ते जिंदगी. मिलते हैं मंडे शाम. शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट. ये आखिरी गीत मिस नहीं करने आपने, रब सोने दे हवाले.
1: London's biggest classics all day. This is Leica Gold.
3: From Lollywood, with love, with Anissa.